नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सांणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सांणंद संयंत्र में प्रति

0: एक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉ जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगहम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पर्दापण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकैना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एला ने तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमरीका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोते हो, आपले प्रसन्न सकाळ सुरेल करणारी आकाशवाणी धाराशिव केंद्राची ही प्रसारण सभा आपण ऐकतोय FM 101.3 MHz आणि प्रसार भारती न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर। सकाळचे 6:05 झाले आहेत। प्रसारित करीत आहोत मंगल प्रभात हा भक्ती संगीताचा कार्यक्रम।

PIDPI यानी पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर रेजोल्यूशन। सरकारी संस्थान, विभाग या मंत्रालय के किसी पदाधिकारी के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार की जानकारी हो यदि आपके पास, तो सारी डिटेल्स के साथ अपना शिकायत पत्र सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग को बंद लिफाफे में भेजें। और हाँ, लिफाफे के ऊपर PIDPI लिखना ना भूलें। PIDPI के अंतर्गत की गई शिकायतों में विसल ब्लोअर की पहचान गुप्त रखी जाती है। अधिक जानकारी के लिए देखें www.cvc.gov.in। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये

0: योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
1: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
2: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा

0: इस सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
1: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर

0: में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमेरिका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे नेस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है, साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोते, आपली प्रसन्न सकाळ सुरेल करणारी आकाशवाणी धाराशिव केंद्राची ही प्रसारण सभा आपण ऐकतोय। सकाळचे 8:15 झाले आहेत। प्रसारित करीत आहोत लखलख चंदेरी हा हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम। श्रोते हो, आज 5 जुलै, प्रसिद्ध बॉलिवूड दिग्दर्शक राजकुमार संतोषी यांचा वाढदिवस आहे। 5 जुलै 1956 चेन्नई येथील त्यांचा जन्म। आई चेन्नईची तामिळी, पी एल संतोषी हे वडील त्या काळातलं मोठं प्रस्थ, ज्यांनी साक्षात देवानंद यांना हम एक है मधून ब्रेक दिलेला, बरसात की एक रात यासारखा सुपरहिट चित्रपट दिलेला। आणि अशी अनेक बेहतरीन गाणी लिहिणारा हा माणूस, जो म्हणे एकेकाळी 50-100 नोटांखेरीज इतर छोट्या नोटा किंवा चिल्लरला हात लावायचा नाही, पण त्यांना इतके वाईट दिवस आले की एकेकाळी त्यांचा ड्रायव्हर असणाऱ्या महमूद यांच्यासाठी ते संवाद लिहित असत, आणि त्यानंतर मग कुटुंबाची जबाबदारी सावरण्यासाठी ते विनोद चोप्राकडे आणि तिथून नंतर गोविंद निहलानी यांच्याकडे सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम करू लागले। 1982 आलेला अर्धसत्य आणि विजेता या सिनेमासाठी असिस्टंट डायरेक्टर म्हणून त्यांनी काम पाहिलं। श्रोते हो, दिग्दर्शक म्हणून त्यांनी पहिला चित्रपट हाती घेतला तो 1990 आणि तो चित्रपट होता घायल। त्यांच्याविषयी आणखीन आपण जाणून घेणार आहोत, पण कार्यक्रमात सुरुवातीला ऐकूयात घायल या चित्रपटातील हे गीत।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम चित्रलोक में। लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में यारियां फिल्म का गाना। इरशाद कामिल हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

अभी आप सुन रहे थे बैंगिस्तान फिल्म का गाना। लीजिए सुनिए लव ब्रेकअप्स जिंदगी। इस फिल्म का गाना बेनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाज़ों में, गीतकार हैं जावेद अख्तर और तर्ज बनाई है सलीम सुलेमान ने।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सुनिधि चौहान की आवाज़ में पुष्पा फिल्म का गाना। रकीब आलम ने लिखा इसे और संगीत से संवारा है देवी श्री प्रसाद ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सूरज पे मंगल भारी, इस फिल्म का गाना। आवाजें हैं मोहसिन शेख, ज्योतिका टांगरी मेलोडी और ऐश्वर्या भंडारी की। दानिश साबरी ने लिखा इसे और संगीतकार हैं जावेद मोहसिन।

तो दोस्तों, आज के चित्रलोक प्रोग्राम की आखिरी पेशकश चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से आवाजें हैं विशाल ददलानी, हंसिका अय्यर की, और इस गाने का तमिल रैप का अंश गाया है श्रीचरण कस्तूरी रंगन ने। बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य और निरंजन अयंगर के, संगीत विशाल शेखर का। तो मैं कहता हूँ, लेट्स गो ऑन अ डांस फ्लोर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है मिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं। लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई

0: कामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

0: दे।
1: फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: राजकुमार संतोषी पर शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में जैसा कि हमेशा होता है एक इबारत हम भेजते हैं और उसे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं और उस इबारत को देखकर आप अंदाजा लगाते हैं कि क्या होंगे, कौन से शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जा सकते हैं। तो आज की इबारत, हालांकि आपने में से बहुत से लोगों ने तो इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए हम एक बार बता देते हैं वो इबारत कि कोई फुर्सत के पल ढूंढता है तो किसी को नौकरी की है तलाश, कोई सबसे दूर होकर खुश होता है तो किसी को चाहिए सब आसपास, उम्मीदों आशाओं चाहतों और जरूरतों का फैला हुआ है आकाश, कभी यहाँ दुख की बदली छाए तो कभी फैले भोर की उजास। क्या कहता है आपका मन, क्या है मुकम्मल जहाँ किसी के पास। तो ये है आज की इबारत जिनमें से शब्द चुनने हैं आपको और इन शब्दों को चुनकर आपको बताना है कि कौन से गीत शामिल हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वैसे हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं और बता भी दिया है कि कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक गीत जो आपकी और हमारी लिस्ट में बिल्कुल मैच हो रहा है बातों के साथ भी और जज्बात के साथ भी, वो गीत तो कार्यक्रम का पहला गीत ही बनने वाला है। वैसे हमारे साथी कहते हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है, किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यही है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि हम अपनी इन अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती, जो मिलता है वो है अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तानों में ही अक्सर सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती हैं और पूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं, ऐसा इनका कहना है। एक और साथी कहते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, जो गर्मी में सूरज से निकलती कड़ी धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव ढूंढता है तो ठंड के मौसम में ठंड से राहत पाने के लिए वही सूरज की तलाश करता है। इसलिए कहा गया कि ये जीवन है, जीवन का यही है रंग रूप। बिल्कुल सही बात आप दोनों ने कही। हम लेकिन आपसे ये पता करना चाहते हैं कि भाई क्या वाकई सारी चीजें अधूरी अधूरी रहती हैं जीवन में, या कहीं ना कहीं हमारा मन इस तरह से चलता है या इस तरह से कहें कि काम करता है कि उसे हर चीज अधूरी लगती है, जो भी चीज पूरी हो जाती है उससे आगे क्या, ये सोच जब हमारे मन में होती है तो हमें कई चीजें अधूरी लगती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और ये भी बताइए कि आपको किस चीज की तलाश है, जो भी तलाश हो सकती है हमें बताइए। और तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। आपको बताना है किसमें आवाज किसकी है, क्योंकि हमें तलाश है इस जवाब की।

0: ये गीत आप सुन रहे थे मौसम फिल्म के। इस गीत में आपने सुना भूपिंदर और लता मंगेशकर की आवाज को, जो कि हमने आपसे पूछा था, सवाल का सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथियों से हम ये भी पूछना चाहेंगे, इस गीत में बहुत सी ऐसी बातों के बारे में बताया जा रहा है या कहा जाता है जो कि एक ख्वाहिश होती है कई बार, जैसे छत पर पड़े रहकर या सोकर तारे देखना या आसमान में मतलब जाड़ों की धूप सेकना, तो इस तरह की बहुत सी बातों का उल्लेख इस गीत में हमने सुना। तो क्या आपने इसमें से बहुत सारी चीज़ों का अनुभव लिया है या कुछ की उम्मीद या तमन्ना अब भी आपके जीवन में है, ये हमें बताइए। और हमारे साथी ने कहा कि एक मुकम्मल जहां बनाने के लिए लोग अपनी आशाएं, उम्मीदें और चाहतों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कोई फुर्सत के पल ढूंढता है, कोई नौकरी की तलाश में, कभी दुख तो कभी सुबह की पहली किरण। हमारा भी मन कहता है कि सूरज की भांति अंधेरे को मिटाकर जीवन में रोशनी भर देंगे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन सुख दुख का माया जाल है, एक धागा सुख का तो 100 धागे दुख के होते हैं। उम्मीद और आशा के साथ हर एक को सुख की तलाश रहती है, फिर भी हमें कभी खुशी, कभी गम, कभी धूप, कभी छांव को स्वीकार करना पड़ता है। राजा से लेकर रंग तक संसार में कोई भी पूर्णतया सुखी नहीं होता। फूल खिलते हैं तो मुरझा भी जाते हैं। जीवन में अक्सर गम के साए नजर आते हैं, सहता है दर्द को जो हंसकर, असल में वही लोग इस जहां में मुस्कुराते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन वाकई हर चीज में सिर्फ दर्द सहने वाला ही इस जीवन में सुखी रहता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास तो लगातार करता है, लेकिन जिस परिस्थिति में है उसमें भी एक संयम रखते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून तो होता ही है। वरना तो हम सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे कि इस गीत में भी है ढूंढने की कोई बात। हमें बताइए किसने लिखा ये गीत और फिल्म में कौन है इस गीत में नायक।
1: डियर सर, सेवा में निवेदन है,

नौकरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज और उन्हीं पर फिल्माया गया है ये गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा है और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें भी लिख भेजी हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की इबारत तो जीवन दर्शन जीने की कला, जरूरतें, दुख सुख, अकेलापन, रंगीन जिंदगी और अपनापन बनाए रखने वाली जीवन शैली को बहुत सुंदर तरह से विश्लेषण किया गया है। कहते ना कि फुर्सत मिले तो पूछ कभी उनका हाल भी, जो लोग जी रहे हैं तेरे प्यार के बगैर। वाह, क्या बात आपने कही। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम तो हर मौसम में वही करते हैं जो गीत में कहा गया है। मौसम फिल्म के गीत को हमने जब दिल ढूंढता है, फुर्सत के रात दिन वाले गीत पर हमने पूछा था ना कि जो जो कहा गया है उसमें से क्या क्या आप करते हैं, तो हमारे साथी ने ये बात कही है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मानव जीवन ही ऐसा है, कभी संतोष मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं कि इच्छा पूर्ति नहीं होती, कभी हो भी जाती है, लेकिन नवीन इच्छाएं पल्लवित होने लगती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये मुकम्मल जहां बाहर नहीं मिलेगा, जो जमीन मिली है वो, जो आसमां मिला है उसी में थोड़ा सुकून ढूंढना पड़ता है। किसी का दर्द बांट लो, किसी चेहरे पर मुस्कान ले आओ, तो शायद अपना अधूरापन भी पूरा लगने लगे। वहीं हमारे साथी ने कहा कि अभी तो ढूंढना पड़ता है, जब धूप तेज होती है तो बाहर जाकर पेड़ों की छांव ढूंढनी पड़ती है। एक और साथी लिखते हैं कि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में ये एक चाहत होती है कि कुछ पल सुकून के मिले। एक गीत मुझे बहुत याद आता है, दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन, दिल चाहता है एक मुट्ठी आसमान, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। इस तरह से उन्होंने बहुत से गीतों का उल्लेख किया। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि जिंदगी शायद इसी का नाम है, हर किसी की अपनी तलाश है, अपनी चाहत है, अपनी कहानी है। कोई फुर्सत के लम्हों में खुश रहता है, तो कोई काम करके खुशी ढूंढता है, तो किसी का संसार अपनों की मौजूदगी से ही महक उठता है। कभी दुख के बादल घिराते हैं तो कभी उम्मीद की किरण आती है, लेकिन अधूरे पलों को भी खूबसूरती से जी लेना जीवन की सबसे बड़ी कला है। एक और साथी कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा जहां सच शायद यही है कि हर इंसान किसी न किसी तलाश में है, किसी को सुकून

चाहिए, किसी को सफलता, किसी को कोई अपनों की भीड़ में अपना अपना होना चाहता है, तो कोई कुछ पल अकेले जीना चाहता है। इच्छाएं पूरी तो होती हैं तो नई इच्छाएं जन्म लेती हैं, यही जीवन का चक्र है। इसलिए मुकम्मल जहां शायद किसी के पास नहीं होता, लेकिन जो अपने आप में संतोष, कृतज्ञता और प्रेम ढूंढ लेता है, उसके लिए ये हर अधूरापन एक सुंदर सफर बन जाता है। क्योंकि जिंदगी सब कुछ पाने का नाम नहीं, बल्कि जो मिला है उसे मुस्कुराकर जीने का नाम है। इतना बड़ा संदेश इतनी अच्छी तरह से आपने लिख भेजा, और वाकई ऐसा होता है कि अगर हम कुछ ढूंढते रहते हैं तो जीवन भर ढूंढते रहते हैं। लेकिन जैसे कस्तूरी मृग अपने कस्तूरी को ढूंढती रहती है जीवन भर, जबकि वो उसी के पास होती है, तो हर शांति जो है वो हमारे अंदर ही है, और ऐसा हमारे श्रोता भी कह रहे हैं। लेकिन हम भी ढूंढ रहे हैं कुछ सवालों के जवाब जो हम आपसे पूछने वाले हैं। हमें बताइए, जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, किस फिल्म का गीत है, किसकी आवाज़ में है, नायक नायिका का नाम बता दें तो क्या बात है।

0: कालिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजें मजरूह सुल्तानपुरी के बोल। हमने पूछा था भाई कौन नायक नायिका है इस फिल्म में बता दे, तो हमारे साथियों ने बिल्कुल बताया, अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ी इस फिल्म में नजर आती है। और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि छत पर लेटने के दिन अब लद गए हैं, वो चांद तारों को निहारना, सर्दी में गुनगुनी धूप का आनंद लेना तो आज भी लेते हैं। तो ठीक है, वो दिन लद गए तो उसका कारण तो हम बाद में जान सकते हैं आपसे अगर आप हमें बताएं। वही लेकिन हमारे साथी कहती हैं कि संपूर्ण यहाँ कुछ भी नहीं, न रिश्ते न सपने न लोग न जिंदगी, हर किसी के हिस्से में कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। किसी के पास सब कुछ है पर सुकून नहीं, तो किसी के पास सुकून है पर जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं। शायद यही जीवन है, तो जो मिल जाए उसे खुशी समझो और जो कुछ ना मिले उसे आगे बढ़ने की वजह मानो। हम पूरी जिंदगी कुछ पाने की कोशिश में लगा देते हैं लेकिन उम्र के एक मोड़ पर आकर लगता है कि परिपूर्ण तो यहाँ कुछ भी नहीं। इस जीवन में कुछ कमी है तो घबराइए नहीं, यही कमी तो आपकी उम्मीदों को जिंदा रखे है। भाई वाह क्या बात आपने कही। हमारे और साथी कहते हैं कि मानव जीवन उम्मीदों जरूरतों आशाओं और चाहतों से बुना हुआ एक ऐसा अनंत कैनवास है जिसके आसमान पर पल पल बदलते रंगों से सराबोर रहता है। जीवन का ये लालित्यपूर्ण आकाश तभी पूर्ण होता है जब हम जमीन की सच्चाई को समझकर उड़ान का हौसला रखते हैं, धूप की सकारात्मकता को अपनाते हैं और क्षितिज को छूने का जुनून बनाए रखते हैं। ये संतुलन ही मानवीय अस्तित्व का सबसे खूबसूरत काव्य है। और एक साथी कह रहे हैं कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। जो अमीर है शायद उसके पास सुकून या अपनों का साथ नहीं है। जिसके पास समय है उसके पास साधन नहीं है। जिसके पास साधन है उसके पास वक्त नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि किसी न किसी चीज की कमी तो बनी ही रहती है। हमारे और साथी कह रहे हैं कि इंसान की तरह आकाश की तरह इंसान की इच्छाएं भी अनंत हैं। एक जरूरत पूरी होती तो दूसरी चाह जन्मती। इसी तरह इसी आकाश के नीचे एक कभी उदासी और असफलता छा जाती है तो कभी सुख और नई उम्मीद की किरण बिखर जाती है। ये जीवन के उतार चढ़ाव का शाश्वत नियम है। मानव जीवन के सबसे गहरे सच और उसके विरोधाभासों को बहुत ही खूबसूरती से बयां करती है। तो बात तो बहुत सारी हो रही है लेकिन ये तो बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या कोई चीज ढूंढी है, बिल्कुल शिद्दत से जिसे ढूंढी हो ये बताइए। चाहे वो हो तो घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है, जीवन साथी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने किस चीज की तलाश सबसे ज्यादा की है अपने जीवन में और क्या वो आपको मिला या मिली ये हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इस गीत में ढूंढने वाले कौन है, यानी नायक नायिका बताइए, फिल्म का नाम भी।
1: दीवाना
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

0: घरौंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। भूपिंदर सिंह और रूना लैला की आवाजें, गुलजार के बोल, जयदेव का संगीत और इस फिल्म में नायक नायिका जरीना वहाब और अमोल पालेकर जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए एक घरौंदा। हमारे साथियों ने बताया कि क्या ढूंढ रहे हैं, उन्होंने क्या कभी अपने जीवन में कुछ ढूंढा और क्या वो उन्हें मिला। तो हमारे एक साथी ने तो बड़े ही दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा कि भगवान को ढूंढने की खूब कोशिश की, अभी भी जारी है। तो इनका जवाब भी हम उसी अंदाज में देते हुए कहते हैं कि अपने मन के अंदर ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए। और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुरीला सफर विविध भारती पर, जिसमें ढूंढने की बातें भी हो रही हैं, सुख दुख की बातें भी हो रही हैं और बातें हो रही हैं कि क्या जीवन में कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ है, क्या हमारे जीवन में हर चीज़ मुकम्मल हो गई है, हमें अब ज़्यादा किसी चीज़ की चाह नहीं है, या जिन चीज़ों की चाह भी है वो भी जल्द ही पूरी हो जाएंगी। तो इस तरह से कोई एक बेचैनी सी नहीं है या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मन में खलबली नहीं मची रहती। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ज़िंदगी रंगमंच है, जन्म से लेकर देह परिवर्तन तक का सफ़र जीवन रंगमंच है। इससे पल इसमें हर पल हर पल दिन रात भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार आते जाते हैं, मुकम्मल अखंड जहां नहीं मिलता। और हमारे एक साथी का कहना है कि फुर्सत के पल, बिल्कुल आज संडे छुट्टी का दिन।
1: अस्मिता वाहिनी श्रोते हो, यानंतर ठीक 1:30 आपण ऐकणार आहोत राष्ट्रीय मराठी बातम्या आणि 1:40 छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचं वार्तापत्र। सुरुवातीला ठीक 1:30

0: आकाशवाणी मुंबई। मनोज अणावकर राष्ट्रीय बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। विकसित भारत जी रामजी योजनेअंतर्गत राज्यांना 25,000 कोटी रुपयांचा निधी केंद्रीय कृषी मंत्र्यांच्या हस्ते वितरित। एलएनजी पुरवठ्यावरचे आपत्कालीन निर्बंध मागे घ्यायचा सरकारचा निर्णय। व्हेनेझुएलातल्या भूकंपात मृत्यूमुखी पडलेल्यांची संख्या सुमारे 3,000 घरात। विख्यात पंडवानी गायिका पद्मविभूषण तीजनबाई यांचं निधन। आणि देशभरात पावसाचा जोर कायम, मुंबईसह अनेक ठिकाणी जनजीवन विस्कळीत। विकसित भारत जी रामजी योजनेअंतर्गत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान यांनी आज राज्यांना 25,000 कोटी रुपयांचा निधी दुरुस्त पद्धतीनं वितरित केला। केंद्र सरकारनं या योजनेतला आपला वाटा दिला असून राज्य सरकारांनीही आपापला वाटा वितरित करावा असं आवाहन त्यांनी केलं।
1: ये भारत सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में वित्तीय संसाधनों की पैसे की कमी नहीं आएगी। मैं सभी राज्य सरकारों को पुनः आग्रह करूंगा कि भारत सरकार ने अपना शेयर दे दिया, वो अपना शेयर दें ताकि मजदूरों को मजदूरी मिलने में विलंब ना हो।
0: विकसित भारत रोजगार हमी आणि आजीविका मोहीम अर्थात VBG रामजी कायदा 1 जुलैपासून

0: सूरत।
1: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, मनमौजी फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसमें नजर आते हैं किशोर कुमार ही। हमारे साथी कहने के आज बाहर बच्चों संग घूमने आए हैं, इसलिए सक्रियता से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम कहेंगे कि आप सक्रियता से भले ही शामिल ना हो, लेकिन अपने पारिवारिक माहौल में जरूर शामिल रहें। हमारे एक और साथी कहने की आज इतवार है, फिर भी डॉक्टर को दिखाकर आपके कार्यक्रम पर भागते हुए शामिल हो रहे हैं। यहाँ जो धूप है वो तो बाहर के देशों में, गर्म देशों में भी नहीं पड़ रही होगी। वहीं हमारे एक और साथी कहने की हमारे तो क्या संडे क्या मंडे, बच्चे स्कूल जाते थे तब संडे को लंबी लिस्ट होती थी, उनके फरमाइश की एक को कुछ चाहिए होता था तो दूसरे को कुछ। पति के जॉब में संडे ऑफ नहीं होता तो अब बच्चे साथ में नहीं है तो भी पता नहीं चलता कि संडे है या मंडे। वैसे हमारे जो साथी कह रहे हैं कि भाग कर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, भाई भागने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपके फोन में आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाल सकते हैं और आराम से अपने फोन पर हमारा कार्यक्रम कभी भी सुन सकते हैं कहीं भी रहकर। और हमारे एक और साथी कहने कि अब हमें रविवार को छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी तो पूरे सप्ताह है क्योंकि मैं घर पर ही बैठे हूँ, पत्नी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, दुकान बंद है। तो बिल्कुल उनका बहुत ख्याल रखिएगा, ऐसे ही वक्त में तो ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे एक और साथी कहने कि रविवार के दिन सभी घर में होते हैं तो आज के दिन भोजन में कुछ विशेष बनाया जाता है और मीठा व्यंजन तो अवश्य ही बनता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने व्यंजनों का नाम नहीं लिखा, वरना तो कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। हमारे एक और साथी कहने कि आज रविवार के दिन एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, उसका तबादला हो गया है दूसरे शहर में। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि इस समय तो सबसे ज्यादा जरूरत है खूब तेज बारिश की, क्योंकि सभी जल स्रोत सूख गए हैं। भाई तो ये बारिश कई जगहों पर आ चुकी है और आपके जगह आपके स्थान पर भी बहुत जल्द बारिश आएगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे एक साथी का देखिए, उन्होंने कहा भी कि सुरीला सफर जब शुरू किया था तो कड़ी धूप थी कि हमने जल्दी से कपड़े धोकर सुखा दिए और देखते ही देखते काली घटा छा गई और बादल गरजने लगा, अंधेरा सा होने लगा। कैसा मौसम करवट अचानक से लेता है, इसलिए तो कहते हैं भगवान की कुदरत, भगवान की रहमत, भगवान की बरकत। सच में लाजवाब है, सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, दोनों का सम्मान करें, चाहे धूप हो चाहे काली घटा छाए, दोनों में हम मस्त रहें। एक और साथी ने हमारे कहा है, बात बता रही हैं कि किस चीज की जरूरत है, तो वो कह रहे हैं कि गर्मियों में नहीं, पल पल पल कैसे कटेगा ये हमने पूछा था, तो वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की प्री प्लानिंग के कारण 5-6 घंटे की बिजली चली जाए तो वो ऐसा लगता है कि कैसे कटेगा ये पल, और गर्मियों का मौसम हो तो ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हमारे एक साथी ने एक किस्सा लिख भेजा है कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त एक आस दिल में लिए घूमते थे जो कभी पूरी नहीं हुई। दरअसल मैं बचपन से अमिताभ जी का फैन था, रात दिन उनके बारे में सोचा करता था, उनके जैसा बनना चाहता था, उनकी फिल्में देखता था, उनके जैसे हेयर स्टाइल रखता था, उनके जैसे बेल बॉटम की पैंट पहनता था और आईने के सामने खड़े होकर उनकी फिल्मों के संवाद बोला करता था। स्कूल में भी ऑफ पीरियड में उनके संवाद बोलता था, इसके लिए टीचर की मार भी पड़ती थी। बड़ा होता गया, जीवन की सच्चाइयां उलझने सामने आती गई और अमिताभ बनने का सपना सपना बनकर ही रह गया। भाई कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में तो कुछ ना कुछ बने ही हुए हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि संडे को तो और भी ज्यादा काम हो जाता है, छुट्टी के दिन तो दिन छोटा हो जाता है, आश ऐसा लगता है कि चार हाथ हो जाएं। भाई ये वाली तो आपकी ख्वाहिश ना पूरी हो, हम ये मानना चाहते हैं, क्योंकि चार हाथ हो जाएंगे तो उतना ही काम भी बढ़ जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जरूरत है मूसलाधार बारिश की,

तो जल्द ही आपकी ये जरूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति इन जरूरतों को जरूर पूरा कर देती है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी आशाएं आपके पास हैं जो पूरी हो रही हैं और पूरी हो जाएंगी जल्द ही, ऐसी आपकी आशा है? साथ में ये भी बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

इकबाल फिल्म का ये गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब दिया। फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना, के सलीम मर्चेंट और डोमिनिक क्लिंटोन की आवाज़ में आपने ये गीत सुना। इरफान सिद्दीकी ने इसे लिखा, सलीम सुलेमान का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफ़र विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि संडे हो या मंडे हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं, हर दिन बिजी लाइफ। भाई ये भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज कल एक मुंह से बोलने की जरूरत है क्योंकि हम अकेले हैं। कहने को तो सभी ही हैं इस परिवार में, लेकिन खाना चाय देने से हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है। मैं पत्नी को मिस कर रहा हूं जो अब नहीं है। बिल्कुल आप अपनी उम्र के लोगों के साथ कोई मित्रता गांठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नौजवान घर के सदस्य होते हैं वो अपने कामों में भी उलझे रहते हैं। आपको समय पर चाय नाश्ता खाना तो जरूर दिया जा रहा है, लेकिन एक भावनात्मक सहारा आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलने जुलने

जरूर मिल जाएगा। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी श्रीमती वास्तव में मेरी सेवा करती है और मैं भी अपनी धर्मपत्नी का पूरा सम्मान करता हूँ। भाई एक रिश्ते की जो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए एक रिश्ते में, और ये आपके पास है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, आप शुभकामनाएं देते हैं। तो कार्यक्रम में जो एक कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस गीत के बारे में तो हमारे श्रोताओं ने भी लिखा और हमने भी इस बारे में सोचा, लेकिन अब आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरा ही गीत है जो आपकी और हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा, और उसे ही कार्यक्रम का अंतिम गीत बनवा रहे हैं। हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गीत है और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं?

खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत ही हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है और इसका बड़ा ही मजेदार इतिहास है। दरअसल सन 1947 में 20 से 27 जुलाई तक एक जाने माने वनस्पति शास्त्री MS रंधावा ने वन महोत्सव आयोजित किया था। इसका मकसद ये था कि देश हरा भरा हो। सन 1950 में भारत के केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री थे डॉक्टर कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। उन्होंने वन महोत्सव को सरकारी तौर पर आयोजित करने का फैसला किया। इसका मकसद ये था कि वनों की कटाई को रोका जाए, धरती को हरा भरा बनाया जाए और लोगों को प्रकृति के करीब लाया जाए। और इस तरह से पूरे देश में हर साल वन महोत्सव मनाने की शुरुआत हुई।

लेकिन वन महोत्सव का मतलब ये नहीं कि केवल 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में पौधे लगाएं, रस्म अदा करें और उसके बाद उन्हें भूल जाएं। जब कभी भी हम पौधे लगाते हैं, उनकी देखभाल करें, उन्हें संजोएं, संभालें, बड़ा करें और इस तरह से जिम्मेदारी निभाएं अपने पौधे के प्रति।

बात सिर्फ वन महोत्सव की नहीं है। दरअसल भारत में लगातार हमें पेड़ पौधे लगाकर पूरे भारत को हरा भरा बनाना है, क्योंकि भारत सरकार ने 2030 तक 2 बिलियन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का फैसला किया है। वैसे भी बीते 7 वर्षों में हमारे देश में जंगल का जो आवरण है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया है, तो हमें पौधे इसलिए लगाने हैं ताकि वो ऑक्सीजन पैदा करें, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, धरती को पकड़कर रखें ताकि धरती का क्षरण न हो, और दूसरा हरियाली की ये सुहानी चादर मन को सुकून दे, आनंद से भर दे और धरती को गर्म होने से भी बचाए। आप जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना ज्यादा है कि मौसम भी अब एक तरह से पटरी से उतर गए हैं। धरती के इस पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए धरती के सारे मनुष्यों को कोशिशें करनी है। एक सामान्य इंसान के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, तो ये कि अपने महत्वपूर्ण दिनों पर, चाहे वो शादी की सालगिरह हो या किसी का जन्मदिन हो या कोई खास मौका परिवार का, तो पौधा लगाइए और उस पौधे के पास एक

त्रिवेणी में आज बात वन महोत्सव की और वन महोत्सव के बहाने पौधे लगाने की। दरअसल पौधे लगाने की जिम्मेदारी सरकारी तौर पर ही नहीं निभाई जानी चाहिए, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपने आसपास पौधे लगाएं। अब आप ये कहेंगे कि ऊंची इमारतों में रहने वाले हम सभी लोग अपनी बालकनी में गमले रखते हैं और वहां पौधे लगाते तो हैं, पर इतने से काम नहीं चलने वाला है। नए नए निर्माण के दौरान बहुत सारे पेड़ पौधों की कटाई कर दी जाती है, इसकी भरपाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सच है कि तरक्की जरूरी है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, सुख सुविधाएं बनाई जाएं, शहरों को एकदम सलीकेदार बनाया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हरियाली की कीमत पर हो। उस शहर के तमाम रहवासियों का ये कर्तव्य बन जाता है कि वो अपने शहर को हरियाली से ढका हुआ बनाए रखें। जितने पेड़ पौधे तरक्की की इस मुहिम में तबाह हो रहे हैं, उन सब की भरपाई करनी हम सबका कर्तव्य है। हम सभी को इस दिशा में सोचना होगा।

ये थी आज की त्रिवेणी, जिसमें हमने वन महोत्सव की और पेड़ पौधे लगाने की बातें की। अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस

0: एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हुर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि वीबीजी राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानंद मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
4: The significance is immense.
3: भारत और

0: और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
3: दीने दीने
4: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
5: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
6: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया सेना ले चला। सावन में
4: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी

0: 150वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में बहु बेटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत, कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली, सुनिए ये गीत।

बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान

0: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और अभी आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी की कलम से निकला है ये शब्द और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज इसे मिली। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में चलिए सुनते हैं जी चाहता है फिल्म से ये गीत।
1: क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, जी चाहता है खींच लूं तस्वीर।

0: जी चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।
1: होशियार।

0: राज कुमार होए होए आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम हैं राज कुमार हाय हाय जाने वाले।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और कार्यक्रम में अगला ये गीत आपने सुना राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं और ये गीत हमने लिया है फिल्म गुमनाम से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गुमनाम फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: तो अब कार्यक्रम मन चाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचणगांव जिला वर्धा महाराष्ट्र से, आरती भगत, वैशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत जो हम आपको आपके पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साधो।

दस नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किनकी फरमाइश पर शामिल होने वाला ये बताएं, उससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू, साजन के मास्टर शिवांशु, ऋषु अभिषेक नायडू, दौलत बाग मुरादा।

अहमदाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्टकार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सकें। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में ये गीत, इंदिवर के बोल, पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंगी से, गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की। और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है सौदागर फिल्म के लिए, ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखों जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: विविध भारती।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
2: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
3: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझ में भी थैरी के फूल नहीं आ रहे, इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
2: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
4: कौन रानी हीरावती?
2: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गूंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ, तू चुप क्यों है?
3: मित्र, अब क्या किया जाए?
4: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए महाराज।
2: बकुला वालिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्य पुत्र की सात पूरी।
5: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
6: भला हम कौन होती हैं
5: महाराज की सात पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
6: चलो।
2: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्य पुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
4: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। रंगे हाथों पकड़ गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था, मैं तो ये देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक ठीक सीख ली है या नहीं।
3: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
2: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्य पुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
3: परंतु देवी,
2: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
3: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
2: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आनी पुड़ी का हम चले यहाँ।

0: ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारे किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
1: छोटी रानी इरावती ने महाराज।
0: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
1: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
0: फिर क्या हुआ?
1: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकला वलका को बंदी बनाकर नाग कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
0: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
1: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देखे कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
0: मित्र, कोई कोई युक्ति तो लड़ाओ।
1: युक्ति युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना?
0: हाँ।
1: तो उपाय मिल गया महाराज, मिल गया। कोई छिपकर सुन न रहा हो, कान में सुनिए। हाँ। मैं नाग को बांध करके नाग मुद्रा लेके
0: जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
1: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
0: तो हमारे लिए वहां जाने का ये अच्छा अवसर है, इस प्रतिहारी जयसेन को सब समझा दो।
1: अभी समझाए देता हूँ महाराज, आप वहां पहुंचिए। जयसेन इधर आओ।
2: कहिए आइए गौतम।
1: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजिए, आपकी विजय हो देव।
0: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पांव की पीड़ा कुछ कम हुई?
3: आज तो कुछ कम है देव।
4: अरे शियारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
5: महाराज मर गया, मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
0: ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी भाग कर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
6: जैसी देव की आज्ञा।
0: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
1: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलूं। मैं प्रमद वन चला गया, वहां फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काल सरी का सांप ने मुझे डस लिया। महाराज ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
3: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े हैं।
5: अरे फांसी का लो, मुझे दबोच लिया।
0: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला ना हो।
5: मेरा तो अन्नंग अकड़ता जा रहा है, सारे शरीर में फैलता जा रहा है।
3: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
4: अरे गौतम, तनिक संभलिए, धीरज से काम लीजिए।
5: महाराज, मैं आपका पाल सका हूँ, सिनाते मेरे बाद मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
0: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
6: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आज गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहां ले जाना होगा। महाराज
0: तो संभाल कर इन्हें वहां ले जाओ।
6: देव की कैसी आज्ञा।
5: कौन जाने मैं जीव या मरूं, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुक हुई हो वो क्षमा की।
3: नहीं नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
6: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा डली हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
3: मेरी अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
6: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए गौतम, आइए।
1: जैसे ये अंगूठी मुझे दो, कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमद वन में पहुंचा देना, समझे?

0: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकुला वलका के पैरों में बेड़ियां डलवाकर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।

0: कौन?
1: अरे गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
2: ये देखो महारानी की अंगूठी।
1: अंगूठी तो उन्हीं की है।
2: तो तुरंत मालविका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो।
1: ओह,
2: यहाँ कितना अंधेरा है, काल कोठरी में तो और भी।
1: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
2: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और।
1: ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
3: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
2: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढकर वहीं लाया।
3: जो आज्ञा।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है।
1: अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
0: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। हा? तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
1: स्वामी की जय हो।
2: सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीख भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ।
1: क्यों सखी, चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
0: ये छोटी रानी इरावती है।
1: ओ
2: सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक से नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
1: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर दाह करने लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
0: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
1: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
3: हे कमल नयनी,
0: स्वामी की जय हो।
3: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रोट गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
2: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रोट गई थी? स्वामी की जय हो।
3: प्रिय,
4: अरे आप कहते कहते चुप क्यों हो गए महाराज?
3: मित्र क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी हैं, परंतु देखते देखते ओझल हो जाती हैं। हमारी
0: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि ये तुम पर भरोसा करने लगे।
2: सखी, मुझ अभागी की तो महाराज से स्वप्न की कभी भेंट नहीं हुई।
0: महाराज, इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
3: उत्तर क्या दें बकला वालिका, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
5: अरे बकला वालिका, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरण चले जा रहा है। आ आ, उसे भगाने चल
0: चले।
5: महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र गृह के द्वार पर हूँ।
1: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
6: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
1: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वही चलकर हम उसका हालचाल जान लें। और
6: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
1: उस समुद्र

0: गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
1: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही जाकर क्यों नहीं मना लेती?
0: अरे पगली, किसी दूसरे से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया, पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: देवी वो देखिए आज ही गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका। हाँ?
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
3: ये कृतघ्न बामन।
0: ठहरिए, आइए हम दोनों उस खंभे की ओट में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक बामन पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ।
4: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
5: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
6: महाराज रुकिए, उधर न जाइए।
1: अच्छा तो ये बात है, समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
5: मैं कहाँ है सांप?
6: महाराज आगे न जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छिपा बैठा है। महाराज रुकिए।
1: कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
5: देवी इरावती,
1: सखी बकुलावलिका, ये किसान है। बकुलावलिका तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
0: जो आ गया
4: तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर पेटी के सामने आके रहा।
7: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
1: देवी क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई?
0: रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
1: सेकी बकुलावली का मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
8: अच्छा तो ये सब इस बामन की करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
4: यदि मैं नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे फंसने देता?
8: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
9: राज प्रासाद वासियों सुनो, एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहले अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार। उसका दोहद पूरा हुए 5 रातें भी नहीं बीती कि उसमें फूल आ गए। अपने सुनहले अशोक के फूलने पर महारानी अत्यंत प्रसन्न है। आज वे प्रमद वन में महाराज को बुलाकर सुनहले अशोक के पूजने का उत्सव मनाएंगी।
10: वासियों सुनो सुनो, एक और हर्ष समाचार। वीर सेन के सेनापतित्व में महाराज की विजयनी सेना ने विदर्भ पर विजय पाली। विदर्भ राज के चचेरे भाई और महाराज के मित्र माधव सेन मुक्त हो गए। माधव सेन ने हे स्वरूप महाराज को बहुत से अनमोल रत्न, हाथी, घोड़े और उच्च कोटि के कलाकार सेवक भेजे।

0: प्रजापति महाराज अग्नि भी
1: ब्रह्मगमन उत्सव में बला रहे।
0: शुंग कुलभूषण विदिशापति महाराज अग्निमित
1: ब्रह्मगमन उत्सव में।

0: जय हो, विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
1: देवी, सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
0: विराजिए देव,
2: विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
1: प्रणाम भगवती।
2: आपके मन की साथ पूरी हो।
0: आर्य पुत्र, फूलों से लदे इस सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
1: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं, देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
0: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गए हैं, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
1: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
3: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियाँ आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
1: ले आओ।
3: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज, प्रस्तुत हैं।
4: महाराज की जय हो, महारानी की जय हो।
1: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
4: महाराज, हम लोगों ने संगीत सीखा है।
1: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
0: मालविका, आगे देव, देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
4: अरे राजकुमारी, आप यहाँ? जय हो,
5: राजकुमारी की जय हो।
0: अरे अरे मालविका, राजकुमारी।
1: मालविका राजकुमारी?
4: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी है।
1: कैसे?
4: सुनिए महाराज, आपकी सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सिंह को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
0: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने दासी बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
1: भद्रे, बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
4: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सिंह हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य सुमति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहां से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
1: फिर क्या हुआ?
4: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
2: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
1: भगवती, आप?
4: राजकुमारी, सन्यासिनी के वेश में ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
2: हाँ वही है।
4: प्रणाम भगवती।
2: कल्याण हो।
1: भगवती, क्या ये भी आपकी शिष्या हैं?
2: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
1: अच्छा, अब कुछ बात समझ में आने लगी।
2: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
6: मंत्री जी, ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है। यह तो दिन में भी जैसे रात हो गई हो।
1: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक हैं।
2: भैया, आप भी तो?
1: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
6: अरे श्री, क्या हुआ? क्या सब लोग एकाएक रुक क्यों गए?
7: ये जान प्यारी है, वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
6: कोई हुआ ना,

0: का भय था।
1: डाकू ने मुझे दिया है।
2: जाइए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।
0: हमारे सैनिक एक एक करके घायल हो रहे हैं, सब मर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया लहू लुहान होकर इधर आ रहे हैं। अरे डाकू ने भैया को अकेले ही खेल दिया है। मंत्री जी लड़ते लड़ते गिर पड़े। हम असहाय रह गए।
3: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूटकर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
4: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
1: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
3: ऐसा ना कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
1: वो क्या?
3: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप्पी साधे रही। और
5: महाराज की जय हो, मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
4: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी ये इच्छा बता दो।
5: जो महाराज की इच्छा।
6: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधे राज्य का शासक बना दिया है। उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
5: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
4: पिताजी का पत्र? लाओ देखें।
6: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकटपूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
4: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में एक वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनों ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ। फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ाकर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
3: महाराज महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों की ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला।
6: भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
4: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगल, जाओ यज्ञ सेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
6: जय सेन।
5: आज्ञा देवी।
6: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी इरावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मुंह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था, हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ। फिर कोई विघ्न न डालें।
5: देवी की जैसी आज्ञा है।

0: मालविका इधर आओ, प्रस्तुत हो देवी। आर्यपुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आप लजा क्यों रहे हैं, मालविका को ग्रहण कीजिए।
1: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजा ही करते हैं।
2: श्रोताओ, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहां चलते हैं जहां अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
2: जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
1: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला।
2: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट? तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलन के रोल काफी किए, क्योंकि अपने इंडस्ट्री का वो एक
1: टैग
2: लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म 2-2, 3-3 साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी। इसलिए जो चेंज होता था, ट्रेंड जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है, वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही

0: करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है, उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की। पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
1: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
0: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट? तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी। और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे, वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था भटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था। उसका भी एक किस्सा है, वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता। तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं? बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है, प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
1: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
0: वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में, इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
1: थर्ड
0: तो
1: जेंडर।
0: थर्ड जेंडर जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता, बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है, अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूं, मैं यहां नहीं बताऊंगी
1: ठीक है,
0: लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
1: यहां गाना सुनते हैं।

अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी, ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व, मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है, वो जब किया था, हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था, पापा जो प्लेज वगैरह करते थे, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक, जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है, आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी, और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने सोचा, चलो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने, और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे, हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे,

0: उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और
1: हो
0: कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा जी कामा कराई जात तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है, तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी
1: कि एक बार फिर से वो
0: पड़ेगी।
1: जनाना रोल
0: हाँ,
1: आ रहा है।
0: जनाना रोल आया है, तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट
1: अरे
0: हमें
1: गजब।
0: बंबई में। तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है।
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है भाई, करो, तुम्हें यही करना है तो करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उस
1: और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी,
0: बहुत
1: आज
0: बहुत
1: तक उसकी
0: ज्यादा,
1: रीलें चलती हैं और
0: हाँ
1: जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं
0: करेक्ट।
1: जो वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है।
0: ओ यस ऑफ कोर्स, हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये काफी
1: बिल्कुल,
0: सारी फिल्में हैं
1: ये
0: जो
1: वो
0: उस वक्त,
1: 80s वाला दौर जो
0: हाँ
1: पूरा
0: हाँ
1: था।
0: हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वाज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्मजी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई, तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो
0: तो
1: चलती
0: वो
1: है।
0: चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुन दा, के या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं। तो हुकूमत वाज अ फिल्म लाइक दैट, कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद, अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे। तो थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो। तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे, और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है। और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों
1: और बहुत
0: में,
1: खूंखार रोल था वो
0: बहुत
1: उनका।
0: ही ज्यादा। काला नाग, काला नाग
1: हाँ
0: राइट,
1: वो,
0: डीबीडीएन
1: हाँ
0: या काला नाग ऐसा ही कुछ रोल था
1: और
0: वो।
1: वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है।
0: नाग हूं मैं, नाग काला नाग, सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लूं। आई विल नेवर फॉरगेट। ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना,
1: हाँ बिल्कुल।
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था। और ये डायलॉग मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे। हाँ, और
1: अच्छा
0: दे यूज टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना, पापा का एक

0: अरे गजब।
1: तो बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को खुरदने की जरूरत की थी।
0: बाप रे।
1: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में, बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
0: बिल्कुल। उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते
1: हाँ
0: हैं जो
1: हाँ
0: कि एक विलेनिश रोल होता
1: रोल
0: है,
1: है।
0: खतरनाक
1: हाँ
0: वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना
1: ओ, मैं वो
0: मामला।
1: फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है,
0: बिल्कुल।
1: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती। मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है,
0: सिर्फ सुना है।
1: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूं वो फिल्म देखने की।
0: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश, क्योंकि
1: ओ
0: वो एक लैंडमार्क मूवी है,
1: करेक्ट
0: वहां से वो
1: करेक्ट।
0: पूरी यात्रा जो है वो आगे
1: हाँ
0: बढ़ती है।
1: हाँ
0: तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहां अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ
1: करेक्ट।
0: आखिरी
1: आखिरी
0: रास्ता
1: रास्ता
0: फिल्म में।
1: में
0: वो भी बड़ा खतरनाक रोल था,
1: बहुत ही। और उस
0: बहुत ही
1: समय
0: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
1: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ
0: ऑफ
1: था,
0: कोर्स,
1: कलाकार
0: बिल्कुल।
1: के प्रति जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था, आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट? सब लोगों को ऐसे ना, रहे हो आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे। और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मुझे क्या करना है उसमें वो रहते थे।
0: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ
1: एग्जैक्टली
0: बच्चन के सामने
1: सामने।
0: विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे, जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिव जी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं।
1: पूरी
0: वो
1: तरह से।
0: जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है।
1: पूरा पूरा इस दैट इज अगेन बिकॉज जैसे मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूं वो वैसे ही थे, वो आप मस्त रहते थे। उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना
0: अपना
1: है,
0: फर्ज निभाओ।
1: अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट? तो
0: बिल्कुल।
1: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक, लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म की बात। और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
0: अच्छा, स्कूल
1: तो
0: में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी हैं तो थोड़ा डिफरेंट है।
1: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफ कोर्स सब लोग मुझे जानते थे बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अब मैं जितनी
0: अच्छा।
1: बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है, और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है

0: के साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो। ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी, और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
1: ओहो करेक्ट
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वॉज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस्ट लगता था कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं, फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी, तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
1: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था? जब शूट्स होते थे घर पर, क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था। मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से,
1: अच्छा
0: हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत।
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूंट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे 1-1.5 घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
1: अच्छा
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो। वो जल्दी उठते थे, 6-6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे, और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग-अलग चीजों पर बातचीत करना। बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग-अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से
1: बिल्कुल
0: आते हैं।
1: बिल्कुल
0: मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है,
1: ओके
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी, और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे।
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की।
0: अंपायर की कभी मेरी साइड लेते थे, कभी उसकी साइड लेते थे, पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना, हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी, या आपने क्यों नहीं ये सही समझा, या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है ये आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते
0: नहीं
1: थे?
0: बिल्कुल नहीं।
1: क्यों?
0: क्योंकि फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने
1: सख्त
0: बैठेंगे,
1: मनाही।
0: इसलिए सख्त मनाएंगे, बिल्कुल नहीं आते थे. लोगों ने बहुत प्यार किया. तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है, वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है. मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है. और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो

इन दोस्त, करीबी दोस्त है, उनकी फैमिलीज, ऐसे हम चार पांच फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था, तो वो उन्हें देखना था, इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहाँ पर बीबी का मकबरा भी है। तो एक तो जहाँ पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहाँ पर वैसे ही इतनी रश होती है। लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब सब पकड़। 1 घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर

0: बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर, वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं, पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे। और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी, वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ, वो अजंठा में जा ही नहीं पाए
1: अरे अरे अरे
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए। वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते। तो
1: ओ
0: उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी-कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, इसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है,
1: बिल्कुल
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है, वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है, ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहां हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: श्योर।

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट.
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है, या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो, वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था. मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना, तो
0: जी
1: उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था.
0: अच्छा,
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी.
0: वो
1: ओके,
0: उनके पंच आते थे।
1: पंच आते थे और वो उसी तरह से बात करते थे. कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे, तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है.
0: फिर
1: ओके,
0: वो जवाब बाद में
1: हाँ,
0: आएगा।
1: वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है. तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था, और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था. जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उनपे बैठ गई, और उसी तरह से काम वो करते रहे करते रहे करते रहे. एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी, जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था. उसके बाद हम साथ साथ है आई, जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था.
0: बिल्कुल, वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल
1: फैमिली
0: रही थी।
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था, और कॉमेडी. और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
0: बिल्कुल,
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे, बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ. इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी, बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में. चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुंदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन, और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन,
0: उनको डायलॉग्स
1: जो
0: भी मजेदार मिलते थे।
1: बहुत मजेदार मिलते थे. और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है आप बुरे होते हो, और आपका एक एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता. कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है. तो ये वैरायटी जो थी, आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने किया, वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
0: आंटी नंबर वन।
1: आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के,
0: हाँ,
1: ऐसी काफी सारी फिल्में हैं. और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ
0: तो मुझे
1: काम
0: वो
1: किया,
0: दृश्य याद आ गया
1: बिंदु जी
0: जिसमें
1: के
0: वो
1: साथ
0: सो रहे हैं
1: काम
0: और वो
1: किया.
0: जगाने आती
1: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का
0: हाँ।
1: नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है. तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना? क्योंकि
0: बिल्कुल,
1: इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते. जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखा

0: ना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजाकिया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत। तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
1: हुकूमत सड़क
0: अर्धसत्य
1: है
0: दिखाऊंगी,
1: ना
0: ये
1: बिल्कुल।
0: सारी फिल्में दिखाऊंगी।
1: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था
0: बहुत
1: वो,
0: ही अलग
1: तो क्या लीग थी वो।
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार। एक तो
1: हाँ
0: इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और
1: हाँ
0: टाइमिंग
1: हाँ
0: कमाल का है। ऊपर से आमिर और जूही, इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं, वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी,
1: बिल्कुल,
0: पर वो
1: लेकिन
0: इतनी
1: ये कुछ
0: ओवर द
1: अलग
0: टॉप
1: था।
0: नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी,
1: यस
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो। मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था, तो
1: अच्छा
0: एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं। फिर दिलीप ताहिल जी थे, उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म। ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी,
1: बिल्कुल।
0: बिकॉज

कि वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे।

0: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
1: यस
0: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोघी ये जो फिल्म थी, एनएफडीसी की फिल्म थी,
1: बिल्कुल।
0: हाँ, और सुमित्रा भावे, सुनील सुकटनकर, इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी, राइट। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए, बिकॉज सुमित्रा भावे, ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसर, निळू फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोघी की थी। दोघी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे, पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है, दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी। तब
1: और
0: तक
1: बहुत
0: वो
1: महत्वपूर्ण फिल्म।
0: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी, क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी, तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
1: हाँ,
0: पापा को नहीं मिला, लेकिन उस फिल्म
1: फिल्म को
0: को
1: मिला
0: मिला
1: बाकायदा।
0: नेशनल
1: जी
0: अवार्ड।
1: जी
0: यस,
1: जी
0: तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे,
1: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे।
0: इंटेंस काम कर रहे थे, बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना, ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है, इसलिए मैं ये करता हूं, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है, तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोघी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोघी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं, तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं, राइट।
1: बिल्कुल।
0: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है, क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे।
1: जी
0: तो थिएटर में जब आप शो करते हो, तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप दो प्लेज कर रहे हो, तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है, आप वो बन जाते हो।
1: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद
0: बहुत
1: है।
0: अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा रोल है, तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जिसे देवाण घेवाण कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी। कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था, इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे।
1: राइट।
0: अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है। तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है, वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें अभी हमें कैसे मोल्ड करना है। एक्टर का से बहुत कम रह गया है। तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया, एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया। इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर 1 मिली,

0: वैसे ही दोघी मिली, वास्तु
1: गुप्त
0: पुरुष
1: मिली.
0: मिली, गुप्त मिली, एग्जैक्टली. और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था. जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी. तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था.
1: बिल्कुल.
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी. तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, NFDC की ही फिल्म है
1: जी.
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए. मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर. तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहाँ के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है और काफ़ी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है. तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म.
1: बिल्कुल. यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं
0: sure.
1: क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ.

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मीटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोतेहो, आत्ताच आपण वरदायिनी भजनी, वरदायिनी महिला भजनी मंडळ यांनी गायलेले अभंग आणि गवळणी ऐकल्यात. गायक कलाकार होते माया शिवाजी मिठे, शीला राजेंद्र बारवकर, नूतन बाबासाहेब कांबळे, निलेश भागवत मांजरे आणि जयश्री कल्याण पुराणिक. संगीत साथ तबला मदन मुरलीधरराव बेलसरे आणि हार्मोनियम निलेश भागवत मांजरे. निवेदन होतं आशिष लगाडे यांचं आणि ह्या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते किशोर पवार. हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणीच्या धाराशिव केंद्रावरून.
1: आकाशवाणीचं हे धाराशिव केंद्र आहे. रात्रीच्या 8:45 होत आहेत. प्रथम हिंदीतून बातमीपत्र दिल्ली केंद्रावरून.
2: समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती. भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2,500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी. विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की. ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की. फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी. अब समाचार विस्तार से. देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है. कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है. मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है. दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है. महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है.

0: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गढ़चिरौली, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉक्टर जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है।

0: जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेईदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को सब पर गर्व है। एक साल दो साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू। 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान आने वाले भूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को इस अवसर प्रणाम किया। राष्ट्रपति विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका निधन एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थ यात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों

0: पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थ यात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम एक घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सॉल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों न हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए, गीत लिखा है नक्शलालपुरी ने, संगीत जयदेव का है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गाना। गीत निदा फाजली ने लिखा है, संगीत से सवारा है उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में है, फिल्म का नाम है कालीचरण, गीत इंद्रजीत सिंह तुलसिया का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजों में सुनिए सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गाना। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अदालत फिल्म का गाना। गीत गुलशन वावरा ने लिखा है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

0: क्या जाने।
1: राइट राइट राइट ऑल राइट।
0: आओ डियर हम चले देयर, आओ डियर हम चले देयर
1: देयर।

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि उनके सुपुत्र राजकुमार संतोषी की बातें आज के फनकार कार्यक्रम में।

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्धसत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: दामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।

इसके अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

0: रंग दे।
1: फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

तुषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला बोल।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: के बंगाल कार्यक्रम आज केंद्रित था निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: सर्जन? वो यहीं पर।
1: यही है?
0: मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

और स्ट्रेट ड्राइव कर दिया बॉलर के पास से 4 रनों के लिए। और इस बार केवल एक प्लेसमेंट बहुत इत्मीनान से चलते हुए 1 रन पूरा किया इससे पहले कि गेंद को उठाया जाए। ये 9वां ओवर चल रहा है, 86 रन अब 1 विकेट के नुकसान पर। सूफी डिवाइन और वरिष्ठ खिलाड़ी कुल मिलाकर 3 रिटायर हुए न्यूजीलैंड के, सूजी बेट्स भी रिटायर हुई, अलविदा कहा इस टूर्नामेंट में। कितने बड़े बड़े कैरियर समाप्त हुए। इस बार बिल्कुल स्टंप्स के करीब आ रही थी गेंद।

0: तेजाब या चित्रपटासाठी नितीन मुकेश, अलका याग्निक, शब्बीर कुमार आणि सहकारीने गायलेलं जावेद अख्तर यांचं गीत आपण ऐकलं. संगीत होतं लक्ष्मीकांत प्यारलाल यांचं. आणि श्रोते हो, या गीताबरोबरच आजचा आपला गोल्डन हिट्स हा हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम आम्ही तर संपवित आहोत. आम्ही आकाशवाणीच्या धाराशिव केंद्रावरून बोलत आहोत. रात्रीचे 11 वाजतायत. प्रथम हिंदीतून बातम्या आणि 11:05 इंग्रजीतून बातम्या दिल्ली केंद्रावरून दिल्या ती आम्ही त्या सुक्षेपित करत आहोत.
1: स्टॅम्प छोड करायला खडी हो गई.
2: देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है. कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है. मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है. दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है. गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है. डांग, नवसारी, वलसाड़, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है. मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है. मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई. बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई. भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ. लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी. यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा. एक रिपोर्ट.
3: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है. उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है. श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी. उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी. ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा. इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा. अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 120,000 रोजगार सृजित करेगा. भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी.
2: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है. केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की. सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे. मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप

0: आकाशवाणीचं हे धाराशिव केंद्र आहे. रात्रीची 11:10 झाली आहेत आणि याबरोबरच आमची आजची दुसरी प्रसारण सभा आम्ही तर संपन्न करत आहोत. तेव्हा पुन्हा आपली भेट आमच्या उद्याच्या पहिल्या प्रसारण सभेत सकाळी ठीक 5:50 FM 101.3 MHz. तेव्हा नियंत्रण कक्षातून दत्तात्रय कुंभार यांच्यासह मी आपला रेडिओ मित्र संतोष पोद्दार आपल्या सर्वांचा निरोप घेत आहोत. शुभरात्री, जय हिंद.
1: पेरी ड्राइव कर रहे थे, अपश ड्राइव मिड ऑफ पर, दायरे के अंदर वो कैच हुई.
2: गुड कैच बाय एकलस्टन देयर. वाज ट्रैवलिंग, इट वाज लो, इट वाज शार्प, बट सोफी एकलस्टन होल्डिंग ऑन टू इट. And a late flourish for England in terms of picking up both the said batters. But I think, as they say, little bit too late. Oh, she's still waiting. Maybe the umpire has asked her to wait to check whether the ball was taken cleanly. I suspect they have to fill the time, Vinit. So they have to have reviews.
1: Aajkal itna kuch laga rehta hai prasaran par. Satellites ityadi book rehti hain aur... विज्ञापनों का और कमर्शियल जमाना है, लेकिन दृश्य उभर रहे हैं सामने मॉनिटर पे कि उंगलियां नीचे थी या गेंद नीचे थी. नो कैच एकलस्टन द्वारा. सेमीफाइनल में हम देख चुके हैं कि वो 5 फुट 11 इंच की अपने कद का पूरा इस्तेमाल करके ऊंचा कैच तो पकड़ ही लेती हैं. क्या लो कैच भी उन्होंने सफलतापूर्वक पकड़ा है, ये अंपायर इस समय देखना चाहते हैं. उंगलियां नीचे हैं या बीच में से बॉल कहीं स्पर्श कर गई है टर्फ पर, वो इस समय यक्ष प्रश्न है और उसके लिए प्रतीक्षा की जा रही है. पिछले 5-10 मिनट में खेल कम हुआ है, रेफरल्स में ज्यादा जाया हुआ है और ऐसा कोई कांटे का मुकाबला भी नहीं है. लेकिन हाँ, एक प्रक्रिया है जिसको कि आपको निभाना है. नई परिपाटी शुरू हुई है जो आगे भी जारी रहेगी. अब वो ये है कि नॉन स्ट्राइकिंग छोर पर रन आउट बॉलर के हाथ से लग के अगर स्टंप्स पे गेंद जाए तो हाथ से लगी या नहीं लगी वो भी मॉनिटर पर स्निको पे अल्ट्रा एच पे देखा गया, जो हमारे अनुभव में हम लोगों ने तो पहले कभी देखा नहीं है. लेकिन प्रावधान तो है, प्रावधान नहीं है ऐसा नहीं है, यूं कहना चाहिए. लेकिन अभी भी दिखाया जा रहा है एकलस्टोन का वो कैच मिड ऑफ में दायरे के अंदर, जिसमें वो नीचे एक लो कैच पकड़ने का प्रयास कर रही हैं. डिसीजन पेंडिंग है और नॉट आउट.
2: अनबिलीवेबल, दिस इज रियली रियली अमेजिंग विनीत. I can't explain.
1: सर ही तो पकड़ लिया एकलस्टोन ने अपना, उनको विश्वास नहीं हो रहा है, अभी भी आपत्ति जता रही है. क्या करिएगा, अब आप टीवी मॉनिटर से तो नहीं लड़ सकते हैं. लेकिन इसीलिए तीसरा अंपायर बहुत तजुर्बेकार होना चाहिए और वो है. किम कॉटन कोई मामूली अंपायर नहीं है.
2: Point is, and this is something that people don't understand, what we see on the monitor is a two-dimensional image. You never can get a three-dimensional image, and the more you show it, the more the doubt goes.

0: goes on. And that is where technology has to be subordinate to the game. It cannot lead the game, in my opinion, but who cares?
1: ऐसा हो जाता है कि कई बार तीसरा अंपायर का जो व्यक्तिगत नजरिया होता है उसका उस लम्हे में जो फैसला होता है वही काम में आता है, और ये अलग अलग हो सकता है, सब्जेक्टिव है, हर व्यक्ति अलग तरीके से निर्णय ले सकता है। दो फील्डर्स के बीच में जो जगह है वहां से ड्राइव करके इस बार रन मिला है, नाम मात्र को पिछले 15 मिनट में खेल हुआ है।
0: सॉरी विनीत, यू नो इन द अर्लियर डेज बिफोर दैट रूल वाज अबॉलिश्ड देयर यूज्ड टू बी अ सॉफ्ट सिग्नल फ्रॉम द अंपायर। आई थिंक दैट वाज अ बेटर वे बिकॉज देन यू नीडेड कंक्लूसिव एविडेंस टू ओवरटर्न द अंपायर्स सॉफ्ट सिग्नल, बट दैट इज नो लॉन्गर द रूल।
1: और जब वो सॉफ्ट सिग्नल दिया जाता था, मार सुर्खियों में रही ये खबर कि सॉफ्ट सिग्नल की क्या जरूरत है, ऊपर भेज ही रहे हैं आप, तो ये चलती रहती है, कश्मकश होती रहती है, आईसीसी नियमों में बदलाव करती चली जाती है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसका अब ये आप अनुमान लगा लीजिए कि इतनी दफ़ा और इतने समय तक देखने के बाद भी वो निर्णय से सब संतुष्ट नहीं है, और ये है प्रक्रिया इसीलिए कि आप सही फेयर निर्णय न्यायपूर्वक उसका फैसला कर सकें। और कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि ये तो तीसरे अंपायर का अपना नजरिया था कि उसने आउट दिया, और ऐसा होता रहा है। 17 ओवर पूरे हुए, 146 तीन विकेट पर।
0: So it looks like we might be into the last over of the game, Vineet. 146 for 3, 5 runs required. Elise Perry is on 13, Ash Gardner is on 1, and of course that innings from Beth Mooney of 64 and that partnership with Phoebe Litchfield of 100 runs really setting the tone. 48 to Litchfield, Mooney on 64. Both got out just after Australia had stamped their authority, and now it looks like a pure formality. But the fact that the game has gone to 17 overs itself is a bit of a surprise, the way Australia were batting. And who's going to bowl the next over? Looks like it might be Sophie Eccleston who is going to bowl out. 3 overs, 1 for 17. The best of the England bowlers, really, because if you look at Charlie Dean, 4 overs for 28. Lauren Bell, 3 overs for 28. Lindsay Smith, 4 overs for 30. 146 for 3. 17 overs, lofted over, pulled back in. Dragged back in probably is a better way of putting it. Limits the scoring to 2. Gardner goes to 3 and the total now 148 for 3. 2 to tie, 3 to win. 7th T20 Women's World Cup trophy awaits Australia and the celebration. Eccleston bowls swept. This one's running down to the boundary. This could be it. 4 runs and Australia have won. So
2: ये लगा आभा का चौका।
0: So as many had predicted, Vineet, it clearly was Australia's day. They were dominating. They dominated from the beginning, and that marks the end of the Women's T20 World Cup with a win for Australia. Their drought is over. Their 7th title is theirs.
1: बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया डिजर्व करती है जीतना, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, और सबको लग रहा था कि इस पिच में बैटिंग करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने आसानी से बैटिंग करके दिखाया। दिक्कत उनको भी हुई, कुछ भाग्य ने भी साथ दिया। शुरू में इंग्लैंड ने जिस तरह से बैटिंग शुरू की, स्टंप्स पे अटैक किया, धीमी गेंदे की गति में परिवर्तन किए, वो सब चीज़ें मायने रखती हैं। कुल मिला के यही होता है कि नॉकआउट्स में अगर ऑस्ट्रेलिया है और फाइनल और सेमीफाइनल में अगर ऑस्ट्रेलिया है तो मुकाबला एक तरफा हो जाता है। तो आपको ये बताते हुए कि ऑस्ट्रेलिया ने 2026 का विमेंस का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, लेकिन चर्चा क्रिकेट की जारी रहेगी। आकाशवाणी आपके लिए लाता है क्रिकेट और ढेर सारा क्रिकेट। तो इस प्रसारण के तुरंत बाद आप स्टूडियो से सुनेंगे प्लेयर ऑफ द मैच।
3: प्लेयर ऑफ द मैच

0: cricket lovers, this was actually anticipation everybody was having, and finally the news is that Australia has won ICC Women's World Cup 2026. I'm Gitanjali Soni, with me is Munish Jolly, and we have our experts.
1: जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम अपने पैनलिस्ट से आपको इंट्रोड्यूस एक बार फिर से कराते हैं। चेतन शर्मा जी, बहुत अच्छा मैच रहा, ये फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हैं। बड़ी जल्दी से आपके, अगर मैं कहूँ कि आप इसको किस तरीके से समराइज करेंगे इस फाइनल को?
2: देखिए, जैसे पहले भी ऑस्ट्रेलिया के बारे हम बात कर रहे थे, अटैकिंग क्रिकेट, मतलब कोई भी परिस्थिति आपके सामने हो, उन्होंने अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलनी है, अपनी जो नेचुरल क्रिकेट है, दे वांट टू प्ले दैट, और वही हुआ। देखिए, आपने मैच खत्म किया, 7 विकेट से आपने मैच जीता, आपने 17.1 ओवर में उस मैच को खत्म कर दिया। तभी तो बार बार हम मनीष कह रहे थे 180, आप सोचिए 180 रन होते तो यहाँ पर आपको द मैच देखने को मिलता जो सभी फाइनल्स में देखना चाहते हैं।
1: राइट, देन मैं बाकी एक्सपर्ट से भी उनके व्यू लूंगा। मोना पार्थसारथी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और वैशाली माथुर, मैं कहूंगा कि आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया मेरी फेवरेट टीम थी।
1: ओके, इंडिया। ओके, आई थॉट कि इंग्लैंड को आप ज्यादा सपोर्ट कर रही थी।
3: उनके स्पिनर्स अच्छे थे, मैं उनको सपोर्ट कर रही थी, बट बाय हार्ट मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रही थी।
1: नॉट बैड।
0: एंड चेतन, एक्चुअली आई वाज आल्सो टॉकिंग टू यू व्हेन वी वर सिटिंग इन द ग्रीन रूम, व्हेन ऑस्ट्रेलिया वॉन द टॉस, इफ hypothetically if they would have chosen to bat first, I think things would have been little more interesting. What do you say?
2: Definitely they would have, jaise unki ballebazi 190 run to zarur bante hain, jo 186 ki baar baar baat kar rahe the na Gitanjali, wo aaj record todte, because they got a power.
0: Yes,
2: and sabse important hai, main ye believe kar raha tha ki England ke spinners kafi had tak कुछ कर पाएंगे इस विकेट के ऊपर, मुझे नहीं लगता। आज ठीक है, उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन रन्स भी ठीक ठाक थे, मतलब अगर 180 रन बनते तो अलग बात थी, लेकिन 150 पे लड़ना जो चाहिए था इंग्लैंड को, वैसा उन्होंने लड़ाई की नहीं, उनके गेंदबाजों ने उस धार के साथ गेंदबाजी नहीं की जो हम सोच रहे थे।
1: मोना, आपसे मैं हिंदी फिल्म की, बॉलीवुड के एक पिक्चर के गाने के बोल के साथ सवाल पूछना चाहूंगा कि 7 अजूबे इस दुनिया में, आखिरी अपनी जोड़ी तोड़े से भाई टूटे ना,
3: मूनी और मूनी,
1: बिल्कुल लिचफील्ड की जोड़ी।
4: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अब बेथ मुनी सेमीफाइनल में भी जिस तरीके से उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई और जो प्रदर्शन उन्होंने किया उसको बरकरार रखा, और ये अनुभव है जो निर्णायक मुकाबलों में, जैसे बार बार हम बात करते हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में है तो कंटेस्ट रह ही नहीं जाती, उसके लिए आपको बहुत ही अपना ए गेम जो होता है वो दिखाना होता है ऑस्ट्रेलिया के सामने, और किसी भी मोमेंट से वो मैच का पासा पलट सकते हैं। और आज तो खैर इंग्लैंड ने वैसा कोई मोमेंट दिया ही नहीं, बिल्कुल ही जिस तरीके से कहा जाए लोप साइडेड फाइनल रहा है, और चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो, ऑस्ट्रेलिया ने पूरा दबदबा अपना बनाए रखा। और फीबी लिचफील्ड की जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा मोमेंट था, और आज अपेक्षाओं पर पूरी खरी उतरी है, बेथ मुनी का उन्होंने पूरा पूरा साथ दिया है, तो ओवरऑल जो ऑस्ट्रेलिया एज अ टीम इसने ये टूर्नामेंट जीता।
0: श्योर, हमारे स्टूडियो में हमारी डोमिनेंस हमारे कॉलर्स की हमेशा बनी रहेगी, मुझे पूरी उम्मीद है वो हमसे जुड़ना चाहेंगे। नंबर वही है 2342-1084, 2342-1085। अगर आप दिल्ली के बाहर से या फिर मोबाइल से कॉल करेंगे 011 लगाना बहुत ही जरूरी है। क्या बात होती है हमेशा जब हमारे कॉलर्स कॉल करते हैं, दो तीन चीज़ें वैशाली बहुत ही ज़्यादा पता कंफर्म क्वेश्चंस हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं इंग्लैंड टीम को, कुछ ऑस्ट्रेलियन टीम को। अभी बहुत सारे सवाल आने वाले हैं कि इंग्लैंड टीम उनकी सॉइल पे, हम कह रहे थे कि बहुत अच्छा खेलेगी और 5 मैच जीतते आई है, एज अ क्रिकेटर आपका असेसमेंट क्या है, क्या हो जाता है जब इतनी ज़्यादा नोन कंडीशन पे आप खेल रहे हैं उसके बावजूद काफ़ी सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस?
3: सबसे मेन होता है आपका प्रेशर हैंडलिंग, कि आप कैसे प्रेशर हैंडल करते हो। आप अपने ही गेम, अपने ही ग्राउंड पे गेम खेल रहे हैं, अपने होम ग्राउंड पे गेम खेल रहे हैं, एंड उसके बाद जो प्रेशर होता है वो आप कैसे हैंडल करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है एज अ प्लेयर खेलना। एंड जो आपकी बैटिंग या बॉलिंग जो भी आपका पार्ट है, आपको वो प्रोफेशनली अच्छे वे में करना चाहिए, उसको पूरा 100% देना चाहिए। जो आज इंग्लैंड टीम का जो मिसिंग था, फील्डिंग आउटस्टैंडिंग थी, बॉलिंग लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छा था, बट बैटिंग में वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। सो ये एक बैटिंग जो जहाँ पे वो लैक कर रहे हैं उसी की वजह से आज वो रनर्स अप बने हैं।
0: और इसी के साथ हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज बहुत ही बड़े विन के बाद पहला कॉलर हमारे इस कार्यक्रम का। नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।

0: जी सचिन, अच्छा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सचिन, क्या पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से आप? जी जी बिल्कुल, ये टारगेट तो हम काफ़ी टाइम से बात डिस्कस कर रहे हैं। अगर इतना टारगेट होता तो अभी कहानी थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो सकती थी। चेतन, जैसा हमने कहा, हमारे जितने भी कॉलेज हैं वो कॉल करेंगे, बहुत सारी एनालिसिस हमसे एक्सपेक्ट करेंगे। आई थिंक राइट ऑफ द बैट आपसे डायरेक्टली मैं पूछ लेती हूँ, इससे पहले बहुत सारे और कॉलर्स पूछे, दोनों टीम्स में से क्या क्या पर्टिकुलर असेसमेंट आपके हिसाब से बेहतर की जा सकती थी, खासकर अगर हम इंग्लैंड टीम की बात करें?
1: देखिए गीतांजलि, सबसे बड़ी बात इंग्लैंड की क्या थी कि आपने पार्टनरशिप पनप नहीं दी। पहली विकेट आपने जल्दी आउट करने के बाद दूसरी विकेट की साझेदारी 100 रन की थी। देखिए जब 150 रन टोटल आपका बोर्ड पे और आप 100 रन की साझेदारी पनप देते हैं तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी में वो धार नहीं थी। रेगुलर इंटरवल्स पे जो हम विकेट्स की बात करते हैं वो विकेट्स निकालने में आप कामयाब नहीं रहे। और मुझे लगता है कि जैसे हम मिड शो में बात कर रहे थे कि स्पिनर्स के ऊपर बहुत दारोमदार रहेगा इंग्लैंड का, वो स्पिनर्स ने कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। मुझे लगता है कि जब ऐसे टोटल के ऊपर आप 100 रन की साझेदारी बनने देते आप मैच वहीं हार गए। उसके बाद ठीक है आपने लड़ने की कोशिश की बट वो लड़ाई बनी नहीं। और जो पहले उन्होंने हमारे कॉलर ने बात की 180 बनने चाहिए थे, वो डेफिनेटली, वो तो हम पहले से कह रहे हैं 180 होते माइट बी स्टोरी बहुत डिफरेंट होती इंग्लैंड के लिए।
0: चेतन, बार बार ये बात आ रही थी कि आफ्टर से अबाउट फ्यू ओवर्स थोड़े से क्रैक जरूर आते हैं ग्राउंड में तो स्पिनर्स को मदद मिलेगी, ऐसा कुछ होता नहीं दिखा कहीं पिच में? आपको लगता है देयर वाज यू नो
1: ऐसा दिखा नहीं मुझे, या कुछ स्पिनर्स के लिए मदद मुझे नजर नहीं आई। कुछ गेंदे जरूर नीचे रही थी जब ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी कर रहे थे, उस समय मुझे लगा कि हो सकता है स्पिनर्स को मदद मिले लेकिन ऐसा नहीं था। एंड देन सबसे बड़ी बात क्या, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने सेटल ही नहीं होने दिए गेंदबाजों को। देखिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम बात कर रहे थे ना पावर गेम की, ऑस्ट्रेलिया की पावर गेम की, उन्होंने कंटिन्यू रखी, उन्होंने सेटल नहीं होने दिया और मन बना के रखा था कि हम 20वें ओवर तक नहीं जाएंगे, इसको खत्म करना है तो कम से कम 15-16 ओवर में खत्म करेंगे। एंड दे फिनिश्ड इन 17.1, दैट्स अ ग्रेट थिंग।
2: तो मोना, आपसे जानना चाहूंगा, आपने इतने सारे इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए हैं, आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसी क्या खास बात है कि अपनी धरती पर तो ठीक है जीतते हैं लेकिन बाहर किसी विदेशी धरती पे जाते हैं तो वहाँ वर्ल्ड चैंपियंस बन जाते हैं?
3: और सिर्फ ये क्रिकेट तक सीमित नहीं है, अक्रॉस द गेम्स, आप क्रिकेट हो, हॉकी हो, किसी भी खेल में। आपको याद होगा कॉमनवेल्थ 2010 जब 8 गोल से ऑस्ट्रेलियन हॉकी टीम जीत कर गई थी, तो एक माइंडसेट है। मुझे लगता है कि एक ऑस्ट्रेलिया में जो स्पोर्टिंग कल्चर है और वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं अपने देश के लिए खेलना, और वो तो हर टीम करती है, लेकिन इनके अंदर जो जज्बा भरा जाता है ना कि हमें उतरना है तो हमें जीत के लिए ही उतरना है, और मुझे लगता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस मैच की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को तो क्रेडिट जाता ही है जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम खेली है, लेकिन इंग्लैंड ने जो अपने देश के अपने ग्राउंड पर खेलते हुए निराश किया उसमें बहुत बड़ा जो एक हाथ है वो मुझे लगता है, अगर आप फाइनल जैसे मैच में 16 एक्स्ट्रा दे रहे हो उसमें 11 वाइड बॉल दे रहे हो, मतलब 2 ओवर आपने एक्स्ट्रा दे दिए सामने वाली टीम को, तो काफ़ी सारे एस्पेक्ट हैं। और फाइनल जैसे मैच में प्रेशर हैंडलिंग, जैसे वैशाली कह रही थी प्रेशर हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो लॉर्ड्स पर खेलते हुए 2009 के बाद पहला वर्ल्ड कप जीतने का एक जो प्रेशर रहा होगा इंग्लैंड के ऊपर वो कहीं ना कहीं हावी हो गया, क्योंकि आखिर में जिस तरीके से विकेट थोड़े एक दो गिरे हैं ऑस्ट्रेलिया के, अगर वो पहले उस तरीके से हुआ होता तो शायद कुछ तस्वीर दूसरी होती।
2: जैसे कि परंपरा चलती है आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं जीत के बाद, द वर्ल्ड चैंपियंस बनने के बाद यहाँ पे प्लेयर्स के साथ इंटरव्यूज होते हैं ग्राउंड पे, अभी वही हम जो खबरें आ रही हैं कि प्लेयर्स के साथ इंटरव्यूज हो रहे हैं। वैशाली, ऑस्ट्रेलिया की टीम की क्या खास बात है आपकी जुबानी?
4: जैसे मोना ने बोला कि माइंडसेट तो ऑफ कोर्स है ही, उसके साथ वो जो भी 100% है वो देते हैं और वो ग्राउंड पे कॉन्फिडेंस से देते हैं, क्योंकि वो एक मैटर करता है कि आपने जो सीखा है, जो आपने प्रैक्टिस करी है, वो आप कितना यहाँ पर कितना अपनी टीम को दे सकते हैं, और वो 100% देते हैं हर एक प्लेयर। एक कहते हैं कि कुछ एक दो दिन किसी प्लेयर्स के लिए अच्छा नहीं होता है, बट बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। एक टीम वर्क है यहाँ पे, तो ये

0: ऐसा टीम वर्क, एक साथ रहना और एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये बहुत रेयर किसी टीम में देखा जाता है।
1: और किसी टीम में एक मैच विनर होता है, किसी में दो होते हैं, ये तो पूरी की पूरी टीम ही मैच विनर से भरी हुई है। तो एक दिन कोई खिलाड़ी चल जाता है, दूसरे दिन कोई खिलाड़ी चल जाता है, तो ऐसी टीम को आप बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम।
2: जी बिल्कुल।
3: और जो डिस्कशन होगा ना अभी मैच के बाद, कहते हैं ना रिव्यू होता है, आप वर्ल्ड कप हारे क्यों, जैसे अभी मोना बात कर रहे थे कि आपने 11 व्हाइट बॉल्स और एक नो बॉल, और वो जो 4 रन 22 के आए हैं वो नो बॉल के ऊपर आए थे, तो इसका मतलब आपने 16 रन एक्स्ट्रा दिए हैं, और आपने 11 व्हाइट्स और एक नो बॉल, तो आपने 12 गेंदे एक्स्ट्रा डाली हैं, तो 12 गेंदे एक्स्ट्रा डालने का मतलब ये हो गया 2 ओवर, तो अगर आप कैलकुलेशन करें इस समय मनीष, 17.1 ओवर, 2 ओवर 7 मिला लीजिए, 19.1 ओवर, और रन्स आप माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब इंग्लैंड ये 150 में भी मैच जीतता था अगर आपने एक्स्ट्रा रन्स और एक्स्ट्रा गेंदे ना की होती।
4: और आपकी बात को थोड़ा सा और पुख्ता करता हूं, क्योंकि ये रील्स का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक रील आई मेरे पास इंस्टा में, तो भारत की टीम के एक बॉलर ऑस्ट्रेलिया टूर कर रहे थे कुछ साल पहले, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को ही वहां जाके इतना तीखा बाउंसर मारा और 2 विकेट वो ले गए। आप लोग जानना चाहेंगे फास्ट बॉलर कौन थे?
0: बिल्कुल बताएं।
4: आपकी बाईं तरफ बैठे।
2: ऐसे एक्चुअली बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जब हमारे पास क्रिकेटर्स लाइक चेतन शर्मा होते हैं ना, तो ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें हैं जितनी हम शेयर कर सके या उनसे जान पाए। चेतन, बात क्योंकि आज प्रेडोमिनेंटली ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की होगी, बट यहाँ पर थोड़ी देर में हिंदुस्तान कि जो हमारी आवाम है वो हमारी भारतीय टीम के बारे में बहुत सारी चर्चा करना चाहेगी। उनके लिए फेयर होगा ये बात करना कि हमारी भारतीय टीम की स्ट्रेंथ, स्पेशली हम विमेन टीम्स की बात करें, इस वक्त आपको क्या नज़र आती है?
3: देखिए, बहुत अच्छी टीम है। अगर आप नॉर्मल बात करें वर्ल्ड कप में, मुझे जो थोड़ी सी समस्या नज़र आई कि एक तो 16 प्लेयर्स थे, 15 प्लेयर्स होते हैं, इंजरी की वजह से 16 प्लेयर हुए, आपने 4 मैचेस के अंदर ही 16 प्लेयर्स का इस्तेमाल कर लिया। इसका मतलब आपके पास प्लान नहीं था, या प्लान नहीं था या आपको विश्वास नहीं था प्लेयर्स के ऊपर। आप 15 के 15 प्लेयर्स 4 मैचेस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत कम आप देखते हैं, तो इसका मतलब सेटअप जो था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ था, या प्लेयर्स पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। इतने जब बदलाव होते हैं ना टीम के अंदर, तो हर समय क्रिकेट में ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अदरवाइज आप देखिए, यही भारतीय टीम है जो अभी हाल ही में वर्ल्ड कप जीत कर आई है, यही टीम थी जो हमें लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 170 रन, इट्स नॉट ए इजी थिंग, यू नो, उनकी बॉलिंग के खिलाफ, उनकी फील्डिंग के खिलाफ आपने 170 रन बनाए, तो थोड़ा सेटअप पे ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, हार जीत एक पहलू है क्रिकेट का। मैं कभी नहीं कहता कि आप गए हो और आप हर समय वर्ल्ड कप जीत के ही आइए। देखिए, दूसरी टीम्स भी आई हैं, वो भी लड़ने आई हैं, वो भी लड़ाई करेंगी, लेकिन जो मैंने अभी बात की गीतांजलि कि आप इतने बदलाव टीम में, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि समस्या आई तो कहाँ आई, वो आगे गलतियां ना हो, उस पर हम कैसे सुधार करें, उस सुधार की बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना देखिए क्रिकेट की फैसिलिटीज बीसीसीआई ने आज के समय में हमारे प्लेयर्स को दे रखी है, मुझे नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसी फैसिलिटीज है। आप एक सीईओ जाकर आइए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बैंगलोर में, आपको लगेगा नहीं आप इस कंट्री में हैं, आपको लगेगा मैं कहां आ गया। मतलब वो फैसिलिटीज, मैं कहता हूं, मैं गया अभी रिसेंटली और लक्ष्मण को मैं यही कह रहा था, लक्ष्मण इज डायरेक्टर देयर वीवीएस लक्ष्मण, कि हमारे जमाने में 50% ये फैसिलिटीज होती ना, मेरे 5 से 7 साल क्रिकेट और बढ़ जाती। ये बीसीसीआई ने किया हमारे प्लेयर्स के लिए, आपको उस जगह से हिलने की जरूरत नहीं है अगर आपको प्लेयर बनना है। तो देखिए, कुछ चीजें जो हुई है गड़बड़, उन पे सुधार जल्द होगा, हमें नजर आएगा, बट अदरवाइज वी आर डूइंग वेल, देयर इज नथिंग टू वरी।
2: तो जितने भी कॉलर्स हमें कॉल करना चाहते हैं वेट कर रहे हैं, नंबर वही है 2342-1084, 2342-1085, और किसी भी तरीके से कोई टेंशन लिए बिना आप हमारे एक्सपर्ट्स को कॉल करें। मोना पार्था सारथी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, चेतन शर्मा फॉर्म इंडियन क्रिकेटर, वैशाली माथुर इंडियन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ हैं, और मैं हूं गीतांजलि सोनी, मेरे साथ है मुनीष जौली, और बहुत ही जल्द प्रेजेंटेशन सेरेमनी भी आपको सुनवाने वाले हैं। जी तो आइए सुनते हैं।
5: So look, 64 of just 49 balls with 10 boundaries in there. We need to get a mic to Beth at some point. There you go. You seem to like finals, don't you? You seem to step up.
6: Just happy to be here. I think, you know, it's been pretty well documented. We didn't quite make it this far in the last 2 ICC events. So, just woke up this morning, pretty grateful we made it this far.
5: Let's talk about how you play. First of all, with the gloves. I mean, brilliant takedown, the stumps with Danny Wyatt.

0: चूंकि सब बात करना चाह रहे हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंसेस क्रिकेटर्स की होनी चाहिए, आपने काफ़ी बार प्रेशर की भी बात की और बार बार हम यही बात मानते हैं, जैसे अगर आप जॉर्जिया वॉल को ले लें, बहुत ही अच्छा उनके लिए तो टूर्नामेंट रहा है, बट आज देखिए उनका जो रन है 9 रन बनाए हैं 6 बॉल पर उन्होंने, तो ये इतने बड़े जब प्लेयर्स हो जाते हैं, इतना अच्छा टूर्नामेंट जाता है और पता है कि हमारी टीम बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है, उसके बावजूद कैसे, समटाइम्स यू नो आई कांट रियली फैदम व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेशर इट इज।
1: आप कितने भी बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हो लेकिन आपको एक अपनी कंट्री को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके लिए खेल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है और काफ़ी हजारों की करोड़ों की संख्या में लोग आपको देख रहे हैं, वो एक प्रेशर अलग होता है। तो आप कितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर हो कहीं ना कहीं वो प्रेशर माइनर होता ही होता है, लेकिन उसके साथ हमारा सबसे मेन होता है कि आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं एज अ प्लेयर। आप विकेट कीपर हैं, बैटर हैं या फिर आप लीड कर रहे हो अपनी टीम को एज अ कैप्टन, वो सबसे मेन होता है लीड, क्योंकि एक लीडर जो होता है वो आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं देख रहा, वो आप सभी अपने अलावा 10 जो आपके प्लेयर्स हैं उनको भी देखना है, उनकी बैटिंग लाइनअप भी करना है एंड उसके साथ आपको अपनी परफॉर्मेंस भी देनी है एंड कौन से बॉलर को कहाँ पर यूज़ करना है, कौन सा बैटर के सामने लेके आना, वो भी माइंडसेट आप देखिए कि एक कैप्टन को कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ग्राउंड करनी पड़ती है।
2: राइट देन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, शायद आइए देखते हैं कि कहां से बोल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है। हाँ जी बोलिए, क्या कहेंगे और अपना पूरा परिचय दें पहले। जी आपकी आपकी तरफ से ना कोई थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है और आवाज़ आपकी जो है हम तक पहुंच नहीं रही है, तो अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारे जो टेलीफोन नंबर्स हैं जिसके सहारे आप हमारा इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं वो हैं 011 दिल्ली का कोड और उसके बाद 2342-1084 और 2342-1085। चेतन भाई आपसे मैं जानना चाहूंगा कि भारत ने भले ही सेमीफाइनल के लिए हम लोग क्वालिफाई ना कर गए हो लेकिन श्री चर्नी टॉप विकेट टेकर हैं 14 विकेट्स लेकर, मोस्ट सिक्सेस की बात करें तो एनरी डर्कसन साउथ अफ्रीका की हैं टॉप पर लेकिन शेफाली वर्मा दूसरे नंबर पे हैं 5 सिक्सेस के साथ, ये स्टैट्स आजकल मॉडर्न डे में बहुत काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा चौके अगर देखे जाए तो स्मृति मांधना तीसरे स्थान पर हैं, अ ग्रेट हिटर, अ वेरी एलिगेंट प्लेयर, 30 चौके उन्होंने लगाए हैं। तो जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ रहा है मैं चाहूंगा कि इन तीनों उपलब्धियों के बारे में आप कुछ कहें।
3: देखिए सबसे बड़ी बात चर्नी की जो आपने बात की कि जिस समय पर उन्होंने गेंदबाजी की है, कमाल की गेंदबाजी की, आप शुरू में भी गेंदबाजी कर रहे हैं और डेथ ओवर्स में आकर एज ए स्पिनर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है किसी भी गेंदबाज के लिए। और चर्नी ने बहुत अच्छे तरीके से टीम को संभाल कर मतलब ऐसी पोजीशन पर लाकर खड़ा किया कि कुछ मैचेस आप जीत पाए। और शेफाली और आपने स्मृति की बात की, देखिए वो अपने आप में ही अगर आप दोनों ओपनर्स की बात कर रहे हैं और दोनों की आप तारीफ कर रहे हैं तो वहाँ से साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय टीम अगर कहीं ना कहीं लड़खड़ाई है तो मिडल ऑर्डर वो सक्षम नहीं रह पाया, मतलब वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। आप ऑन एंड ऑफ अगर रन्स बनाते हैं, ऊपर से भी ऑन एंड ऑफ रन्स बनाते हैं। स्मृति की मैं बात करूं, स्मृति के मैचेस कुछ बहुत अच्छे गए, कुछ एकदम गिर गए, लेकिन वर्ल्ड कप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मनीष, आप तो इतने समय से फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड कप्स को कि यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। इतने देखिए वर्ल्ड कप आजकल तो बहुत जल्दी जल्दी वर्ल्ड कप आ जाते हैं, 2 साल के बाद आपको वर्ल्ड कप मिलता है, हमारे समय में 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आता था, 4 साल आपको इंतज़ार करना पड़ता था। कितने ऐसे सुपरस्टार्स हैं इस कंट्री के अंदर जिन्होंने 10-10 साल 12-12 साल क्रिकेट खेली है लेकिन वर्ल्ड कप एक नहीं खेला। देखिए हो जाता है कभी कभी, वर्ल्ड कप के समय आप फॉर्म में नहीं थे, टीम में नहीं आए, तो जब वर्ल्ड कप में आपको मौका मिलता है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं सभी की और वहां पर फेलियर्स आप एक्सपेक्ट नहीं करते। देखिए आपको मिलने 5 या 6 मैचेस हैं, अगर उसमें से 2 मैच या 3 मैच एज ए प्लेयर आपके खराब हो गए तो टीम को बहुत नुकसान होता है, वही हुआ भारतीय टीम के साथ। अगर आप आंकड़े देखेंगे इंडिविजुअल बहुत अच्छे नजर आएंगे, जब आप कंबाइन चीज करेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम का डाउनफॉल कहाँ हुआ, ये रीजन था कि आपने एक मैच में बहुत अच्छा किया, 2 मैच खराब हो गए और 2 मैच भारतीय टीम हार गई, तो वो समस्या आई आपके साथ।
0: और इस वक्त उम्मीद करते हैं हमारे कॉलर जब कॉल करते हैं उनको कोई समस्या ना आए, बिल्कुल क्लियर उनकी आवाज हम तक पहुंचे। हेलो नमस्कार जी, वेंकट सर कैसे हैं आप? जी वेंकट पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
3: जी बताइए। नमस्कार जी।

0: नहीं जी, आपका प्रश्न देखिए, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स अगर आप खेलेंगे, रन्स बनाएंगे, लेकिन मैं आपके थोड़े से नॉलेज के लिए डाल दूं कि T20 दो लगातार दो वर्ल्ड कप में भारतीय टीम जीती है, ऑस्ट्रेलिया नहीं जीती है, तो भारतीय टीम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेलती है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन भारतीय टीम अगर अच्छी क्रिकेट खेल रही है, लेट्स सपोर्ट आवर इंडियन टीम, बिकॉज अगर हम अपने इंडियन टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी क्रिकेट खेली है, मेंस क्रिकेट की बात करें, पिछले दो साल के चैंपियंस कौन है, भारतीय टीम है, और हमारी वुमेन्स क्रिकेट भी हाल ही में 50 ओवर्स मैचेस जीत के आई है, ठीक है, वन ऑफ दिस वर्ल्ड कप, इट हैपेंस, नथिंग टू वरी अबाउट। हम जो अच्छा क्रिकेट खेलेगा हम तारीफ करेंगे, अगर भारतीय टीम भी अच्छा खेलेगी वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट।
1: जी बिल्कुल, और जब भी हमारे श्रोता हमें कॉल करते हैं ना, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हवा में खेलते हैं, एक ये जरूर मुना बहस छिड़ जाती है कि T20 फॉर्मेट और वन डे फॉर्मेट दोनों बहुत ही डिफरेंट मुख्तलिफ फॉर्मेट हैं, और आजकल कोशिश ये की जा रही है कि जैसे कि हम लोग T20 में ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हार्ड हिटिंग करनी पड़ेगी, वन डे में टिक कर खेलना पड़ेगा, क्या सेम प्लेयर्स दोनों फॉर्मेट में खेलें या फिर थोड़ी सी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, T20 में यंग अलॉट इंट्रोड्यूस किया जाए तो बेटर है?
2: देखिए, T20 निश्चित तौर पर कि आपको एक ही स्पेल में मैच का रुख बदल सकता है, आपको आते से ही पहली गेंद से मारना शुरू करना पड़ता है, और 50 ओवरों का जो क्रिकेट है उसमें आपको टिककर खेलना है, लेकिन अभी आप ज़्यादातर टीमों को देखिए तो जो फलक्रम होता है, जो कोर ग्रुप होता है, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अगर हम अपनी महिला टीम की भी बात करें तो ऑलमोस्ट वही टीम है, ज्यादातर खिलाड़ी वही हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है 50 ओवरों का। तो अगर आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं तो आप ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हो सकते हैं। अब आप ये देखिए कि विराट कोहली का उदाहरण ले लीजिए आप, कि आप वो T20 में भी आपने देखा IPL में किस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे अब तो वो रिटायर ही हो चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अच्छी प्रतिभा है तो आप ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर हो सकते हैं। ये जरूरी कतई नहीं है कि T20 के लिए अलग टीम हो, और लेकिन जब बात होती वर्कलोड मैनेजमेंट की, वहां ये बात आती है कि जो अलग अलग किस रेस्ट की जरूरत है, आप एक सीरीज खेल रहे हैं दूसरी सीरीज नहीं खेल रहे, तो वर्कलोड मैनेजमेंट के अंदर आता है। लेकिन आप जो अगर ये कहें कि एक खिलाड़ी में प्रतिभा है कि वो सिर्फ T20 खेल सकता है और वो वनडे नहीं खेल सकता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है।
1: क्योंकि अभी रिसेंटली हरमनप्रीत को लेकर काफी चर्चा हुई कि वेदर शी इज फिट फॉर T20 एंड शी शुड बी स्टिकिंग विद ODI।
2: देखिए, जब हमारे यहाँ फैंस जो होते हैं ना, वो सिर पे भी बिठाते हैं और क्रूअल भी बहुत होते हैं, और मेमोरी स्पैन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, ये भूल जाते हैं कि टीम वर्ल्ड कप विनर टीम है, और अभी बात होने लगी कि रीथिंक नहीं करना, रीसेट करना है इस टीम को, और हरमनप्रीत टीम में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जो आखिरी मैच था उसमें उनकी ही इनिंग थी कि इंडिया 170 तक पहुंच सकी है, तो ये सब तो चलता रहेगा, सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत तुरंत प्रतिक्रियाएं आती हैं, और जो अक्सर मैं सुनती हूँ खिलाड़ियों को, चेतन सर बिल्कुल इसको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, कि जो मैदान के बाहर का नॉइस होता है वो हमें अफेक्ट नहीं करता, तो ये जो नॉइस है वो सोशल मीडिया का नॉइस है, वो मीडिया का नॉइस है, तो वो प्लेयर्स को मुझे नहीं लगता उससे बहुत ज्यादा, उनका फोकस जो रहता है वो अपने प्रदर्शन पर रहता है, और कोई भी खिलाड़ी किसी भी खेल का हो वो हारने के लिए कभी नहीं मैदान पे उतरता।
1: वेरी ट्रू।
3: वैशाली, आप कुछ कहना चाहेंगी, सोशल मीडिया कितना प्रभावशाली हो रहा है प्लेयर्स के लिए, उसके बाद चेतन भाई बोलेंगे।
4: एक्चुअली सोशल मीडिया पे ये देखा जाता है कि जैसा आप दिखाते हैं वैसा आपको समझना पड़ेगा, क्या वो सही है या गलत है, क्योंकि उसका प्रभाव आप पे कैसा पड़ रहा है या लोगों के पे कैसा पड़ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर मैच देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको समझ आता है कि किस प्लेयर ने कहाँ पे कैच ड्रॉप किया, कितना डिफिकल्ट था, कितना ईजी था, या बैटिंग जब आप करते हैं तो वहाँ पर बैटिंग जब हम देख रहे हैं तो वहाँ पर भी हमें देखने

0: मिलता है कि किस वे में हम बॉल स्विंग हुआ, कितना हुआ, एंड उसके बाद अगर हम विकेट कीपिंग की भी बात करें तो वहाँ पर भी हम जज कर सकते हैं अपने प्लेयर्स को कि किस वे में कौन सा प्लेयर बेटर है और कौन प्लेइंग 11 के अंदर खेलने के प्लेइंग 11 के अंदर खेलने के लिए लायक है और कौन नहीं है. तो वो हमारी जजमेंट देखने से, मैच को देखने से होती, नॉट ऑन द शॉर्ट रील्स देख के हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं.
1: जी जी बिकॉज चेतन आप तो बहुत ही इंटेंसली मीडिया के साथ काम कर रहे हैं, प्रो एंड कॉन सोशल मीडिया के काफ़ी हो सकते हैं, और जैसे मुना ने बोला कि ज़्यादातर जो है वो जीरो नॉइस कर देते हैं क्रिकेटर्स, वाकई ऐसा हो पाता है बिकॉज दे एवरीबडी हैज़ अ मोबाइल, ऑल्दो हमने सुना था कि अलाउड नहीं होता, बाकी आप ही ज़्यादा बता सकते हैं कि कितना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं.
2: देखिए मुझे नहीं लगता कोई अफेक्ट करता है सोशल मीडिया या मीडिया को कोई चीज़ अफेक्ट करती है प्लेयर्स को, ना ही ध्यान देने की ज़रूरत है, वो किसी को अफेक्ट नहीं करती बिकॉज अगर आप देखेंगे 90% चीज़ें जो चल रही होती है मार्केट में, बिकॉज आई वॉज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रशियन सेलेक्टर्स, तो 90% चीज़ें होती हैं वो मतलब आसपास नहीं होती जो अंदर चीज़ें हैं. तो वो इसलिए प्लेयर्स को मालूम होता है कि जो चीज़ चल रही है, इवन सेलेक्टर्स को मालूम होता है जो चीज़ चल रही है वो आसपास नहीं है, बिकॉज मेन चीज़ तो मालूम ही नहीं है और ना ही कभी वो जिंदगी में बाहर आएगी और क्या है क्या नहीं, और उसके ऊपर कोई परफॉर्मेंस बिकॉज अभी जैसे मैं मोना जी अभी बात कर रही थी हरमनप्रीत का, हरमनप्रीत इज मतलब शी इज अ लीडर, शी इज नॉट अ कैप्टन, शी नोज हाउ टू लीड अ साइड, एंड कैप्टन और लीडर में कैप्टन तो कोई भी बन जाता है, लीडर बनना बहुत मुश्किल होता है. वर्ल्ड कप्स जताने अपने आप में बहुत बड़ी बात आती है. हिंदुस्तान इंडिया की अगर आप बात करें कितने साल से हम क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन से कितने कैप्टन हैं जिन्होंने हमें ICC वर्ल्ड कप जितवाया, कपिल देव इज नंबर वन, नंबर टू इज महेंद्र सिंह धोनी, नंबर तीन इज रोहित शर्मा, नंबर चार इज सूर्य कुमार यादव, और हाल ही में अभी कैप्टन बने थे और वो बने ओनली 4 कैप्टन इन सो मेनी ईयर्स. तो कैप्टन्स तो बहुत बने हैं, लीडर्स बनना बहुत मुश्किल होता है. तो कभी कभी जब पब्लिक उठकर बात करती है ना हमारे लीडर्स के बारे में दुख लगता है. देखिए बहुत शॉर्ट मेमोरी रहती है कि अभी आप जिताकर आए तो आप राजा हैं, नहीं जिता के आए तो आप रंक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड सपोर्ट द गेम को सपोर्ट करें, और हार को कैसे आप स्वीकार करें बहुत इंपॉर्टेंट है. हार जीत पहलू है स्पोर्ट्स में, हर समय आप जीत नहीं सकते. आज ऑस्ट्रेलिया अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम लोग यहाँ बैठकर बोल रहे हैं ना अच्छी खेल रही है, अगर नहीं तो हम कहे नहीं वो अच्छे नहीं खेल रही, इंडिया अच्छी खेली थी लेकिन वो किस्मत खराब थी इंडिया हार की. नो, ऑस्ट्रेलिया प्लेड बेटर क्रिकेट, दे डिजर्व टू विन, दे वॉन्ट इट, दिस इज स्पोर्ट्समैनशिप एंड दैट शुड कम इन आवर फैंस कि नहीं अच्छा है ठीक है. हाँ जो गलतियां वो तो हम बोल ही रहे हैं, गलतियों पे यू हैव टू गो बैक ऑन द ब्लैक बोर्ड. वो मैंने अभी आपको बताया था कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं इंडियन टीम के साथ, वुमेन्स इंडियन टीम के साथ, और यू हैव टू गो ऑन द बोर्ड एंड रेक्टिफाई थिंग्स.
3: राइट देन, याद दिला दें कि ये जो डिस्कशन आप सुन रहे हैं, इस डिस्कशन में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हैं, और ये डिस्कशन जो है ये वुमेन्स वर्ल्ड कप फाइनल के ऊपर हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है. 150 रन बनाए थे इंग्लैंड ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर, और ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से मैच जीत लिया, 17.1 ओवर में ये मैच खत्म कर दिया. आंकड़े बता रहे हैं कि विमेंस T20 वर्ल्ड कप में वो टीम जिसने अनबीटन रन रखा अभी तक, इंग्लैंड ने रखा था साल 2009 में जब पहली बार T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था, और ऑस्ट्रेलिया ने ये तीसरी बार ऐसा किया है कि पूरे वर्ल्ड कप में वो एक भी मैच नहीं हारे. 2010 में, 2023 में और 2026 में T20 वर्ल्ड कप अनबीटन वो जीते हैं. चेतन शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, मोना पार्थ सारथी हमारे साथ मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ हमारे इस पैनल में जुड़ी हैं, और मुझे लगता है गीतांजलि पैनल में एक और शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वो है हमारे नए कॉलर, और देखते हैं कि वो कहां से बोल रहे हैं.
4: हेलो हेलो.
3: राइट देन, आई थिंक थोड़ी देर में उनके पास आते हैं, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि कुछ टेकअवेज हो वैशाली, अगर हम अच्छी परफॉर्मेंसेज की बात करें तो हम दीप्ति की वो परफॉर्मेंस कैसे भूल सकते हैं जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वो एक धुआंधार गेंदबाजी की, 5 विकेट ली, बेस्ट बोलिंग एनालिसिस उनके बन गए मेरे ख्याल से, उससे बेहतर कर तो सकती हैं लेकिन यादगार वो रहा. श्री चरणी भी 4 for 19, सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस वर्ल्ड कप अगर हम बोलर्स की बात करें तो, ये एक अचीवमेंट है भारतीय बोलर्स के लिए.
0: बिल्कुल, और राधा यादव भी है, आप शायद ऐड

0: भूल गए उसे भी, वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी है उन्होंने लास्ट ऑस्ट्रेलिया टीम के अगेंस्ट। एंड वहाँ पर दीप्ति शर्मा ने, जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 5 विकेट्स लिए थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग भी की थी। तो यहाँ पर दिखाता है कि आप जब आपका कॉन्फिडेंस अप होता है तो आप कैसे अच्छी और परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जैसे कि दीप्ति शर्मा ने पाकिस्तान के अगेंस्ट फील्डिंग में दी एंड उसके बाद उनकी बैटिंग में भी हुआ। एंड अगर हम मैं बात करूँ श्री चरणी की, एक यंग प्लेयर है एंड वुमेन टीम के अंदर ऐसा यंग प्लेयर राधा यादव के बाद, जो राधा यादव एज अ बेस्ट फील्डर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर बोली जाती है, लेकिन अब एक और नाम जुड़ गया श्री चरणी जो बेस्ट बॉलर बोली जाती है। दोनों यंग प्लेयर्स हैं, तो अब आने वाले टाइम पे यंग प्लेयर्स काफी अच्छा खेलेंगे और उनका कहीं ना कहीं दबाव बनता रहेगा। और एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेलना बहुत जरूरी है उनको, क्योंकि उनसे जो एक्सपीरियंस उनको है वहां से वो उनको गेन करना भी बहुत जरूरी है।
1: मोना, जितने भी ऐसे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, रेप्यूटेड टूर्नामेंट होते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात होती है कि दे कम आउट विद अ ब्यूटिफुल स्टोरीज। और यू बीइंग सच अ सीजन्ड जर्नलिस्ट, आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग लवली स्टोरीज टू टेल। कोई ऐसी आपकी फेवरेट क्रिकेटिंग स्टोरी जो कि शॉर्ट एंड स्वीट है, आप शेयर करना चाहें ऑन दिस प्लेटफॉर्म?
2: देखिए, ऐसी तो बहुत सारी है। जब हमने वनडे वर्ल्ड कप जीता था तो काफ़ी प्लेयर्स के बारे में स्टोरीज आई थी। मुझे ऋचा घोष का याद आ रहा है कि जब वो खेलना शुरू किया था सिलीगुड़ी में, तो कोई लड़कियां वहाँ खेलती नहीं थी, लड़कों के साथ वो खेलती थी और उसी से उन्होंने अपने खेल में वो ताकत पैदा की, उस तरीके की वो शॉट लगाती थी। और रॉयल बंगाल टाइगर का टैटू बनाया था उन्होंने अपने हाथ पर कि इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो काफ़ी सारी, जब आप जीतते हैं तो बहुत सारी कहानियां आपकी सामने आने लगती है और बहुत मोटिवेशन। अभी एक क्रांति गौड़ की मैं स्टोरी सुन रही थी कि उनकी मदर को उनकी ज्वेलरी बेचनी पड़ी थी एक क्रिकेट किट खरीदने के लिए। तो कहां, हमने सफलता हम सब देखते हैं लेकिन उसके पीछे कई लोगों का जो योगदान होता है, कई सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
1: आई एम श्योर हम लोग पूरी रात अच्छी अच्छी स्टोरी सुन सकते हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में अपनी भी स्टोरीज बताना चाहेंगे। एक और कॉलेज के हमारे साथ। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। जी आकाश, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, एक्चुअली हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं प्रेशर के बारे में, दबाव के बारे में, लेकिन एक चीज़ मैं चेतन ज़रूर आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसे हमने पहले कहा, आप सिलेक्टर रहे हैं, चीफ सिलेक्टर रहे हैं और बहुत सारे अभी भी मेंटरिंग आप बच्चों की करते हैं। इतने सारे जो आजकल कैंप्स लगाए जाते हैं जिसमें लोअर स्ट्राटा, जिसे अभी जैसे बता रही थी मोना कि कैसे जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर पाते, हाउ दे गो टू एनी लेंथ टू बी अ क्रिकेटर, तो इसमें आप कैसे, हाउ यू हैव दैट आई, द कीन आई टू फाइंड आउट द टैलेंट, व्हाट्स द प्रोसेस? पीपल हु आर लिसनिंग राइट नाउ, द यंगस्टर्स हु वांट टू रियली कम इन, दे कांट रियली अफोर्ड मच, व्हाट एग्जैक्टली वुड यू लाइक टू टेल देम?
3: देखिए, आजकल अगर टैलेंटेड क्रिकेटर है कोई, वो आपकी आंखों से नहीं दूर नहीं होगा। अगर आप बेशक जितने मर्जी बच्चों के बीच में हैं तो बहुत जल्दी पिकअप हो जाता है। कोचेस की आंख इतनी अच्छी होती है कि इट टेक्स ओनली फॉर ए बेटर, मतलब 6-7 गेंदों में समझ आ जाती है। देखिए क्या है कि एक जो हुनर है ना, वो ऊपर वाला आपको देता है और देन उसको तराशता एक कोच है। तभी तो कहते हैं ना, हीरे को तराशता कौन है, तो वो कोच है। तो वो आपका टैलेंट नहीं छुप सकता और टैलेंटेड जो बच्चा है वो कभी भी पीछे नहीं रहेगा। इमटेरियल, आजकल देखिए बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर जाकर बच्चा खेल सकता है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। और मुझे नहीं लगता कि कोई पैसे को लेकर कोई ज्यादा समस्या है कहीं भी। अगर अच्छा क्रिकेटर है, उसको कोई भी अपनी अकेडमी में, या मतलब मैंने जितना आज तक सुना है, बिकॉज जितना मैं सुनता हूँ बहुत क्रिकेटर्स की है, दे लव टू हैव गुड क्रिकेटर, बिकॉज सबको तराश के देश के लिए तैयार करना है, उनका नाम होता है, कोचेस का मेहनत करते हैं। देखिए आसान नहीं होता एक प्लेयर को छोटी उम्र से बड़ा तक करना और वहाँ जाकर देश के लिए खेलना, बिकॉज एंड ऑफ द डे ओनली 15 प्लेयर्स सेलेक्टेड टू प्ले फॉर द कंट्री। लाखों करोड़ों बच्चों में से 15 ऊपर जाते हैं, बहुत मुश्किल काम है,
1: मैमथ टास्क।
3: या तो वो जो टैलेंटेड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आजकल बहुत स्कूल क्रिकेट भी है, दिस बहुत

0: अपॉर्चुनिटीज हैं, एक जमाने में अपॉर्चुनिटीज थी नहीं। तभी मैं हर युवा बच्चों के लिए और यंगस्टर्स के लिए मैं यही कहता हूँ कि देयर इज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ग्रैब इट जहां आपको मिलती है। इतनी क्रिकेट अवेलेबल है आज के समय में यंगस्टर्स के लिए कि यू कांट इवन थिंक अबाउट इट। और जब से ये तीन तीन टीम्स बनती है, आप देखिए आईपीएल के साथ तीन टीम्स, कितनी अपॉर्चुनिटीज अपना अपना टैलेंट दिखाने के लिए। देन अगर उसके बाद भी आप नहीं ब्रेक इन कर सकते तो मतलब या तो आपके कहते हैं ना किस्मत में नहीं लिखा हुआ और या फिर आप कहीं गलतियां कर रहे हैं। तो अदरवाइज टैलेंट को तराशना, इट्स वेरी इजी फॉर द कोच कि पता करना कौन से लड़के में वो हुनर है। वो उन प्लेयर्स को जाने नहीं देते कोचेस, तो पकड़ के रखते हैं उनको।
1: चेतन थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, बिकॉज बहुत सारे क्रिकेट लवर्स जो क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं आई थिंक उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं तो हर समय ढूंढता रहता हूँ ऐसे प्लेयर्स, कहीं भी मिले तो वी विल ट्राई एंड पास ऑन द मैसेज टू द स्टेट्स एज वेल एज टू द क्रिकेट अकेडमीज। इवन हमारे क्रिकेटर्स हैं जो बहुत अकेडमीज चलाते हैं कि ये लड़का अच्छा है इसको रख लीजिए, बिकॉज मैं तभी कहा ना अच्छा क्रिकेटर कोई नहीं छोड़ेगा, और वो मैटर ही नहीं करता कि उस बच्चे के पास ऐसे हैं कि नहीं है।
1: That's great to hear.
2: Right then, player of the match, ये डिस्कशन आप सुन रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं कि कब वो विजयी ट्रॉफी पकड़ाई जाएगी ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम को, जो बन गई है वर्ल्ड चैंपियंस और सातवीं बार उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। 2010, 2012, 14, 18, 20, 23 और अब 2026 में वो वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात की जब चर्चा चली चुकी है तो वैशाली मोना आपसे जानना चाहेंगे, इंग्लिश विलो, चेतन भाई तो बता ही देंगे इस बारे में, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, विलो जो लकड़ी है वो आती है इंग्लैंड से, पूरे वर्ल्ड ओवर में चेतन भाई वो विलो जो है फैलती रहती है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब इंडिया की जो कंपनीज हैं, जो बैट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके बल्ले अब इंग्लैंड के प्लेयर्स, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के भी प्लेयर्स जो हैं वो उन बल्लों को यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें खेल रहे हैं। वैशाली सबसे पहले आप।
3: जी बिल्कुल, क्योंकि एक बैट के अंदर हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर कैसे स्ट्रोक्स हैं, एंड उसको अगर हम जब टैप करते हैं बॉल तो वो कितना आपको बैट पे बाउंस देता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैट को चेक करना और आपका आपके हिसाब से उसका बैलेंस कैसा है आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक प्लेयर का बैलेंस अपने माइंड के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है, एंड उसके साथ उनका जो बैट का वेट होता है, हर कोई प्लेयर हर प्लेयर का बैट का वेट अलग अलग होता है, तो वो एक और वहाँ पर वो कौन से बैट के साथ कम्फर्टेबल है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर्स के लिए, तो ये मैटर करता है। एंड इट्स गुड कि अभी आजकल काफ़ी अच्छे इंग्लिश विलो बैट आ गए हैं तो आप भी यूज़ करें।
2: इंडिया आते हैं और वहां से फिर इंग्लैंड जाते हैं और साउथ अफ्रीका जाते हैं। मोना, आर यू सरप्राइज्ड?
4: नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं इसको इस तरीके से देख रही हूँ कि जो हमारी राष्ट्रीय खेल नीति आई है उसमें मेजर जो फोकस पॉइंट है वो ये है कि भारत में खेल साजो सामान निर्माण को बढ़ावा दिया जाए, जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं इतना सारा वो अब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहिए, तो उस पर काफ़ी फोकस है। और मुझे लगता है कि अभी पीछे एक सम्मेलन भी हुआ था स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स का, तो शायद मेरठ के बल्ले तो पहले से बहुत फेमस
1: बहुत
4: है
1: फेमस
4: कश्मीर
1: है।
4: विलो तो काफ़ी ज़्यादा इस पर जोर दिया जा रहा है, और जैसे आपने कहा कि अब विदेशी खिलाड़ी हमारे खेल रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है सिर्फ क्रिकेट ही नहीं और भी खेलों में जो स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा।
0: जो आपने बात की मोना जी, मैं जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है इंडिया का वर्ल्ड में आई थिंक नंबर वन है, मतलब जिस तरह के आप इट्स नॉट क्रिकेट, इट्स क्रिकेट तो है ही उसके साथ आप फुटबॉल की बात करें, आप मतलब जलंधर एंड मेरठ आर द टू प्लेसेस जहां पर बहुत मैन्युफैक्चरिंग होती है, और भी होती होंगी जिसका हमें आइडिया नहीं, बिकॉज हमारा क्रिकेट में मनीष बेसिकली वी टॉक अबाउट जलंधर एज वेल एज मेरठ। तो बट जब हम इन फैक्ट्रीज में विजिट करते हैं हम देखते हैं कि जिस अमाउंट पे फुटबॉल्स बन रही हैं, जिस अमाउंट में हॉकीज बन रही हैं, स्पोर्ट्स आप किसी कंट्री में, मतलब क्रिकेट प्लेइंग नेशंस की मैं बात कर रहा हूं, आई कीप गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, आपको हर जगह पर इंडियन इक्विपमेंट नजर आता है, पैड्स, ग्लव्स, जो वो जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है ना, बैट को आप थोड़ा साइड पे रख दे वो तो मतलब मैसिव है इंडिया का जो मार्केट है, एंड वी आर एक्चुअली प्राउड ऑफ इट कि जो चीजें हैं वो जब हम जाकर देखते हैं कि भारतीय कंपनीज की इस्तेमाल होती है वर्ल्ड वाइड, इट्स अमेजिंग। वो आपका ना दिल को बड़े सुकून मिलता है, मजा आता है देखकर कि आज हमारी वो इक्विपमेंट जो हमारे समय में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s,

0: जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया था ना मनीष, वहां से मैं कुछ चीजें लेकर आया था स्पोर्ट्स, मतलब था, अगर मैं थाई पैड की बात करूं, चेस्ट गार्ड की बात करूं, उस समय हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं था. और आज देखिए हमारे देश से हर चीज, हर वर्ल्ड के हर कोने में वो इक्विपमेंट सप्लाई हो रही है. तो इट्स अमेजिंग एंड इट्स रियली प्लेजेंट फॉर आईज, है ना, जब हम जाते हैं वर्ल्ड वाइड, हर जगह, मतलब वर्ल्ड में क्रिकेट इक्विपमेंट की बात करूं, इंडियन इक्विपमेंट हैज बीन यूज्ड.
1: एंड यू नो, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि क्रिकेट एक रिलीजन है, खासकर हमारे भारत में, और बहुत पैशनेटली लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट को. और जैसा हम पहले कहते थे, चेतन आप भी बोल रहे थे बार बार कि लोगों को एक थोड़ा बैलेंस रखना चाहिए, कभी कोई परफॉर्मेंस नहीं अच्छी भी होती, तब भी बी विद योर टीम टू गिव देम कॉन्फिडेंस एंड नॉट पुल देम डाउन. बिकॉज जब हम इनसिक्योरिटीज की बात करते हैं ना, तो ये बात भी आती है जब क्रिकेटर्स को पता चलता है कि लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो एक ये भी चेतन डर रहता है ना कि हो सकता है टीम से ड्रॉप ना कर दें, उतनी सिक्योरिटी दी जाती है उनको.
0: बिल्कुल गीतांजलि, क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो वेरी गुड टू टू टू ए लिमिट. मतलब ये नहीं कि आप पीछे हाथ दौड़ के पड़ गए किसी के. ठीक है, देखिए अगर आप खराब खेलेंगे, आपका क्रिटिसिज्म बनता है. इवन हम जब कमेंट्री करते हैं या हम स्टूडियो में होते हैं, हम भी तो बात करते हैं ना, किसी ने खराब शॉट खेला और उसकी वजह से आप मैच हार गए, तो यू क्रिटिसाइज, यू जस्ट स्टे टू द क्रिकेट ओनली. जब देखिए फैंस हैं तो हर चीज है, हम फैंस की बहुत इज्जत करते हैं, बट जब वो क्रिकेट एंड क्रिकेट के बाहर चीजें चले जाती है ना, वो दुख लगती है. आप क्रिकेट की बात क्रिकेट तक सीमित रखे, उसने खराब शॉट खेला, उसने खराब गेंदबाजी की, खराब फील्डिंग की, एक्सेप्टेड, बट व्हेन इट गोज बियॉन्ड इट, दैट हर्ट्स, दैट्स इट.
2: तो मैं समझ सकता हूं कि मध्य रात्रि हमारे भारतीय समय के अनुसार हो चुकी है, लेकिन हम अभी इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे कब ट्रॉफीज जो हैं वो दी जाएं ऑस्ट्रेलिया को. विनिंग ट्रॉफी, इंग्लैंड रनर्स अप रही अपने ही घर में. लॉर्ड्स जो गढ़ है क्रिकेट का, कहा जाता है कि अब इससे बड़ा कोई वेन्यू नहीं है, वहां पर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के हाथों 7 विकेट से परास्त कर दिया गया. बेथ मुनी विकेट कीपर बैटर 64-49, और उनको प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया. एंड ऑफकोर्स फोबे लिचफील्ड ने 48 रन की जो नॉक खेली और 100 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच में, वो एक आसान सी जीत तय कर गई ऑस्ट्रेलिया के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध.
1: और अब हमारी साझेदारी होने वाली हमारे एक और कॉलर के साथ. हेलो, राधे राधे जी. जी, आप सवाल पूछिए, प्रश्न पूछिए. जी, बहुत सारी डिस्कशंस. अगर आप सुन रहे हो हमारे कार्यक्रम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, हमने क्या एडिशन हो सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उस बारे में चर्चा जरूर की है. जैसे जैसे अभी आगे चर्चा बढ़ेगी, आप और इस बारे में जान पाएंगे. लेकिन एक चीज मोना, बिकॉज ये परफेक्ट मौका है, आप जर्नलिस्ट हैं एंड देट टू सच अ सीजन वन. एक्सपेंशन जो क्रिकेट की हुई है, खासकर ये जो वर्ल्ड कप है, मैसिव 12 टीम्स थी, कहीं आपको लगता है ऑब्वियसली दिस इज गुड फॉर क्रिकेटर्स, बट जैसे आयरलैंड को बीच में लाया गया, सो व्हाट डू यू थिंक, दिस एड्स एन एडेड टाइम एंड अ प्रेशर एंड टेक्स अवे द क्वालिटी, लाइक यू नो सम ऑफ द पीपल वर सेइंग, और दिस इज रिक्वायर्ड टू फाइंड मे बी मोर स्टेबिलिटी इन क्रिकेटिंग ग्राउंड.
3: देखिए फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है साथ में, हाँ. ठीक है, 48 टीमें,
1: हाँ.
3: और बड़ी आलोचना हुई थी कि इससे क्वालिटी चली जाएगी और वो मजा नहीं आएगा जो बड़ी टीमों के बीच होना चाहिए. लेकिन आपने केप वर्दे का नाम सुना
1: जी,
3: कुरासाओ का नाम सुना, तो ऐसे अगर आप एक तरफ बात करते हैं, आईसीसी बात करती है क्रिकेट को उन टेरिटरीज में ले जाने की जहां पर क्रिकेट नहीं खेला जाता, इतनी सारी लीग्स दुनिया भर में खेली जा रही हैं, तो ये जो छोटे देश हैं, जिन देशों की आपने बात की, जो पारंपरिक रूप से महाशक्तियां हैं क्रिकेट की, अगर उन्हीं के बीच में वर्ल्ड कप करा लिया जाएगा, तो फिर इन देशों को इस तरह के एक्सपीरियंस का मौका कहाँ मिलेगा. और आप देखिए कि कितनी बार हमने वर्ल्ड क्रिकेट में उलटफेर देखे हैं, जब छोटी टीमों ने बड़ी टीमों को हराया है. तो अभी T20 फॉर्मेट है, इसमें कोई किसी टीम के बारे में कुछ नहीं कह सकते, एक फेस की बात है, मैच का पूरा नक्शा बदल जाता है.
2: राइट देन, समय आ गया कि अब हम लॉर्ड्स एक बार फिर से चलें, क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी उस

0: reached the finals unbeaten. And कहते हैं ना जब आप बिना हार के वहां फाइनल तक पहुंचे हैं, एक को हारना था और वो इंग्लैंड की बारी थी. लेकिन कभी कभी इतनी मेहनत के बाद जब आपको हार का सामना करना पड़ता है दुख लगता है. लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों कैप्टन्स की इंटरव्यू सुन के कि जैसे जैसे उन्होंने इनकरेजिंग वर्ड्स बोले हैं.
1: एंड क्विक थैंक यू टू मोना एज वेल एंड यू वुड आल्सो लाइक टू से समथिंग क्विकली.
2: जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट रहा और जैसे कि जो दो सर्वश्रेष्ठ टीमें थी वो फाइनल में पहुंची और ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा एक बार फिर साबित किया.
1: वैशाली,
3: एज यू सेड कि यंग्स जो भी यंगस्टर्स आएंगे उनके लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट है एंड इससे देख के काफ़ी लड़कियां और क्रिकेट खेलें एंड उस तरीके का कंपटीशन और बेटर हो. मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स और खेलें, क्रिकेट खेलें एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सीजन एंड थैंक यू सो मच फॉर टू यू एंड मनीष जी आपको भी.
1: No, actually, we have to thank our experts for being so gracious and always here to help us, guide us, and help the cricket overall. And I would like to thank Chetan Sharma for joining us in the studio.
0: Thank you.
1: Your presence is always magnanimous. And thank you so much, Mona Parthasarathy. Your wisdom, your knowledge brings monumental gain to us. And Vaishali Mathur, you have been an addition to the cricket and, of course, to the studio. Thank you so very much for joining.
3: Thank you.
1: My friend Munish Jolly, it is always a pleasure having you. Why are you so quiet? Suddenly you're sleepy?
4: थैंक यू सो मच जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं. लेकिन वैशाली, जो बात आपने की उसको आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम का समापन हम कर रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट द वुमेन हु आर लिसनिंग टू अस, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ प्लेयर. आई थिंक आकाशवाणी लुक्स फॉरवर्ड टू लॉट ऑफ यंग टैलेंटेड वुमेन, द लेडीज, द गर्ल्स टू कम एंड बिकम स्पोर्ट्स कॉमेंटेटर्स. एंड थैंक यू सो मच. और इससे पहले कि हम लोग जाएं, हमारी जो टेक्निकल टीम है, मनोज कुमार, सुशील कुमार, संजय कोटनाला जो पर्दे के पीछे बहुत मेहनत करते रहते हैं, प्रोडक्शन असिस्टेंट्स हैं स्वाति कपूर, अमीशा पटेल, तन्मय पंत और हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, आप सब तक ये प्रसारण बहुत मेहनत मशक्कत के साथ लेकर आए हैं. आशा करते हैं ये प्रसारण, सजीव प्रसारण, लाइव बॉल बाय बॉल कमेंट्री आप सभी को पसंद आई होगी.
1: जी एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू से दैट यू मेड द वर्ल्ड कप फाइनल अलाइव फॉर ऑल आवर लिसनर्स एज वेल एज अस. सो थैंक यू सो वेरी मच. दिस इज गीतांजलि, मुनीश एंड ऑल द टीम फ्रॉम आकाशवाणी सेइंग कीप ऑन एंजॉयिंग क्रिकेट. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस.
5: प्लेयर ऑफ द मैच.
6: अभी आप आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए फाइनल T20 क्रिकेट मैच पर आधारित विशेष कार्यक्रम प्लेयर ऑफ द मैच सुन रहे थे.
7: यू हैव बीन लिस्टिंग टू अ स्पेशल प्रोग्राम प्लेयर ऑफ द मैच ऑफ द फाइनल T20 क्रिकेट मैच प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ऑफ द आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026. दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी.

0: क्या है बब्बर, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।